मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक समत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर

परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर

0: के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मूचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस।

भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस ये है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्ययाक्ष का वध प्रभु ने वरह शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस। स्वर था हरिहरन का और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। सुविचार। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के कष्ट में साथ खड़ा हो। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, जिसमें सबसे पहले आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये शिव भजन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सूरज से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

दोस्तों, अपनी ज़िंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियाँ लाता है और बुरा दिन एक अनुभव, और एक सफल ज़िंदगी के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी है।

दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब किताबों या वक्त नहीं, बल्कि हमारे तजुर्बे देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब तक हमें उन सवालों के जवाब मिलते हैं, तब तक अक्सर हमारे सवाल ही बदल चुके होते हैं।

दोस्तों, जो इंसान हमारे बुरे वक्त में कमियों को ढूंढने के बजाय हमें हिम्मत दे, हौसला दे, वही असल में सबसे अनमोल और सच्चा साथी होता है।

दोस्तों, जीवन में पैसा, पद, रुतबा, नौकरी ये कोई मायने नहीं रखता जब तक आपका मन अंदर से खुश ना हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि मन हमेशा शांत और खुश रहे, वरना सब कुछ पाकर भी हार जाओगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। 8 बजने को है। कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार ले होंगे।
1: पर उर्दू में समाचार।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य

बंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण

0: और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
2: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में दो दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
4: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और

0: तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
1: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉ मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: अभिनंदन,
1: स्वागत,
0: सुप्रभात,
1: नमस्कार। देखो देखो नीला आसमां समंदर में समाया है, लहरों का एक जत्था किनारे पर फिर आया है। मिटा गया वो रंजो गम जो गीली रेत पर लिखे थे, फिर निकला सूरज एक नया सवेरा लाया है।

0: जी हाँ दोस्तों, इस नए सवेरे में इस सकारात्मक संदेश के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ स्वागत करते हैं हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर।
1: और साथ ही साथ नया दिन नया सवेरा नया अंक लेकर हाजिर है नमस्कार की पूरी टीम। और नमस्कार की टीम में कौन कौन है, सबसे पहले करवाते हैं आपसे टीम परिचय। ट्रांसमीटर पर है प्रकाश पवार और चंद्राराम पटेल।
0: कंट्रोल रूम से हमारा साथ दे रहे हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार।
1: अनाउंसर ऑन ड्यूटी प्राइमरी चैनल पर है पौलाश दास।
0: और एफएम का कंसोल संभाल रही हैं हिना खान।
1: नमस्कार कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड की।
0: और इस पूरी रचनात्मक टीम के साथ हम हैं आज के आपके दो साथी, मैं हेमलता और मेरे साथ हैं
1: अर्चना। तो ढेर सारी जानकारियां और बहुत सारी बातें और साथ ही साथ बहुत प्यारे प्यारे गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार।

0: जी हाँ श्रोताओं, ये जो मन है हमारा, ये वाकई में बहुत बावरा होता है और कई बार हमारी जो बातें हैं वो मानता नहीं है और अपनी मन मर्जियाँ करता है, और ऐसे में कई काम बहुत बेहतर हो जाते हैं तो कई काम बिगड़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल बिगड़ सकते हैं। और कहा भी यही जाता है कि कभी चुपके से मुस्कुरा कर देखना, कभी चुपके से मुस्कुरा कर देखना, दिल पर लगे पर्दे हटा कर देखना, ये जिंदगी तुम्हारी खिलखिला उठेगी, खुद पर कुछ लम्हे लुटा कर देखना।

बिल्कुल, दिल लेना दिल देना है सौदा खरा खरा, मगर आज के दौर के ये जो लोग हैं वो दिल लेने दिल देने की बातों को कहाँ ठीक से जानते हैं। वो कहते हैं ना, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे खत पर कलेजा निकाल के।

बिल्कुल, दिल की खाली जगह को भरने के लिए भी कई सारी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम अपने इस खाली मन का इलाज कर सकते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसे लम्हात हमारे साथ बीतते हैं कि वो ताउम्र फिर हमारे दिल में कैद होकर रह जाते हैं। हम चाहकर भी उन्हें भुला नहीं पाते और समय समय पर उनकी भीनी भीनी महक हमारी जिंदगी की फुलवारी को महकाती रहती है।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और अगर इससे इश्क करेंगे तभी हम जिंदगी से प्यार कर सकेंगे। और कहा भी गया है कि जिंदगी एक उपहार है, इसे कबूल कीजिए। जिंदगी एक एहसास है, इसे महसूस कीजिए। जिंदगी अगर दर्द है तो इसे बांट लीजिए। जिंदगी प्यास है तो प्यार दीजिए। जिंदगी अगर मिलन है तो मुस्कुरा लीजिए। और जिंदगी अगर जुदाई है तो सब्र कीजिए। कहा ये गया है कि जिंदगी आखिर जिंदगी है, इसे जी भर के जी लीजिए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के केंद्र पर अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब उतार चढ़ाव होते हैं और ऐसे में अपनी ज़िंदगी को सरल बनाना बहुत मुश्किल होता है। और कहते तो हैं कि परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस उसकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि ये जो जीवन के उतार चढ़ाव है वो उसी के जिंदगी में आते हैं जो उसका सामना कर सकता है। जो व्यक्ति इस काबिल होता है कि वो सारे हालातों से उभर कर आगे बढ़ सके, असल में वही सफलता को पार कर सकता है।

दोस्तों, घड़ी में 9 बजने वाले हैं और यहां पर हम रुकेंगे प्रादेशिक समाचारों के लिए। 9:10 पर नमस्कार कार्यक्रम लेकर आपके बीच पुनः हाजिर होंगे। इंतजार कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। 9 बजने को हैं। कुछ देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निर्माण और रखरखाव सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी, आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार।

समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पहले चरण में वे 2 दिन की यात्रा पर आज शाम इंडोनेशिया पहुंचेंगे। श्री मोदी कल वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्याकार्ता जाएंगे, जहां वे प्रम्बनन मंदिर में दर्शन करेंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। गौरतलब है कि इंडोनेशिया ने भारत के लिए महत्वपूर्ण मलक्का जल डमरू क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये क्षेत्र केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंचेंगे और यात्रा के आखिरी चरण में श्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत ये समारोह रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन और राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरूआत तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी इस समारोह में शिरकत करेंगे, जहां वे राजस्थान की सहकारिता मॉडल की सफलता को राष्ट्रीय पटल पर प्रस्तुत करेंगे। सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान में हुए नवाचार और विकास कार्यों ने देशभर में विशेष पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा है कि सहकारिता ग्रामीण समृद्धि और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम है और राज्य सरकार सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने का लगातार प्रयास कर रही है। सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस समारोह के सिलसिले में कल विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में प्रदेश में शानदार प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम डॉ मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष घोषित 2 वर्ष के आधिकारिक समारोह के तहत होगा। गृहमंत्री अमित शाह और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉ मुखर्जी की जयंती के मौके पर राज्य में भी विभिन्न आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही विचार गोष्ठियां और अन्य आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल

प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी डॉ मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। अजमेर के पंचशील मल्टीपर्पज स्टेडियम का नाम अब डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम होगा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने डॉ मुखर्जी के नाम के प्रस्ताव पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पत्र को मंजूर करते हुए निर्देश जारी किए हैं। 80,000 दर्शक क्षमता वाले इस स्टेडियम के निर्माण पर करीब 12 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इसमें आधुनिक खेल संरचना विकसित की जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे देश के विकास और आर्थिक प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण और रखरखाव उनकी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री कल जयपुर में मुकुंदरा टनल से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मुकुंदरा टनल निर्माण के दौरान टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले मार्ग पर वन्य जीवों के आवागमन के लिए एनिमल ओवरपास के निर्माण में पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण का ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का गुणवत्ता के साथ समय पर मरम्मत कार्य पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के अधूरे काम को जल्द पूरा करने और यात्री सुविधाओं को बेहतर तथा आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने व्हाट्सएप ग्रुप से 500 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरोह के मुख्य सरगना को पुणे से गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी लोन देने के बहाने फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों के दस्तावेज हड़पता था और फिर उनके नाम पर म्यूल बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम को ठिकाने लगाता था। आरोपी अपने नेटवर्क के जरिए सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ता था और सदस्यों को कमीशन का लालच देकर अन्य लोगों को फंसाता था। शिकायत मिलने पर स्टेट साइबर क्राइम जयपुर की एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसने इस मामले की तह में जाकर आरोपी को पकड़ा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की वर्ष 2027 की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। बोर्ड सचिव नीतू यादव ने बताया कि विद्यार्थी 6 अगस्त तक परीक्षा शुल्क के साथ चालान जनरेट कर सकेंगे। शुल्क 11 अगस्त तक निर्धारित बैंकों में जमा करना होगा। अंतिम तारीख के बाद लेट फीस के साथ 1 सितम्बर तक आवेदन का अवसर भी मिलेगा। प्रदेश में मॉनसून दक्षिण पूर्वी जिलों के साथ पश्चिमी जिलों में भी पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, वनस्थली, फलौदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर सहित कई क्षेत्रों में बारिश हुई। प्रतापगढ़ में 1 इंच से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। 12 जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई।
1: जिले में मानसून अब रफ्तार पकड़ने लगा है। भारी गर्मी और उमस के बीच रविवार को 12 शहर समेत जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। 12 शहर में 23 एमएम, अटरू में 2, शाहबाद में 30 एमएम और किशनगंज में 2 एमएम बारिश दर्ज की गई। जिले के गौघाट, हरनाउदा साजी, पलाइता समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई। जिले के केलवाड़ा और हरनाउदा साजी थाना क्षेत्र में शनिवार शाम और रविवार को बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहे 3 किसानों की मौत हो गई। देवरी कस्बे में रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट और करीब 40 मिनट तक जोरदार बारिश हुई जिससे सुबह से पड़ रही तेज गर्मी और उमस से लोगों ने राहत की सांस ली। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 5-6 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी वर्षा की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। सहकारिता मंत्रालय का 5वां स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में राजमार्गों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निर्माण और रखरखाव सरकार की प्राथमिकता। और प्रदेश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी, आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: स्वागत एक बार फिर से आप सभी का अपने पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और नमस्कार में आज आपके साथ हैं दो साथी, मैं अर्चना चौहान
3: और मैं हेमलता।
2: दोस्तों अब बात कर लेते हैं।

0: हैं आज के इतिहास की। जी हाँ, हर दिन खास होता है और हर दिन में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जिसे लेकर हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। और इतिहास को इसलिए ही जानना जरूरी होता है क्योंकि इतिहास की नींव पर ही भविष्य खड़ा होता है। तो बात कर लेते हैं 1885 की। 6 जुलाई का दिन था। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था आज ही के दिन।
1: 1892 में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे। किसी भी भारतीय के लिए ये पहला मौका था और वो तारीख थी 6 जुलाई की।
0: जी हाँ दोस्तों, दादा भाई नौरोजी भारत के पहले नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं। ब्रिटेन की संसद में वे लिबरल पार्टी के कैंडिडेट के रूप में पहुंचे थे। 1892 से 1895 यानी 3 वर्ष तक वे इसके सदस्य रहे। उन्होंने किसान, नारीवादी, मजदूरों के समर्थन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। और यह वह समय था जब ब्रिटेन में रंग भेद चरम पर था और ऐसे समय में इन समस्याओं को मुद्दा उठाने के लिए बहुत जिक्र की बात थी। और यही नींव पड़ी हमारी स्वतंत्रता संग्राम की भी।
1: उन्नीस को आज ही का वो दिन था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उन्नीस में आज ही का वो दिन था जब दक्षिण पूर्व अफ्रीकी देश मालवी और को ब्रिटेन से आजादी मिली थी।
0: 6 जुलाई 2005 वह दिन था जब मैक्सिको में मानव का 40,000 वर्ष पुराना पद चिन्ह मिला था।
1: २००६ में आज ही के दिन भारत और चीन के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है, को 44 साल बाद दोबारा खोला गया था।
0: और 2006 में ही विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने पुर्तगाल को हराया था आज ही के दिन। वहीं बात कर ली जाए 2008 की, तो दक्षिण मिस्र में 5,000 साल पुराना शाही कब्रिस्तान मिला था। 2012 की बात कर ली जाए दोस्तों, तो आज ही का वह दिन था जब संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की जारी विश्व निवेश रिपोर्ट में 2012 के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 2012 से 2014 तक की अवधि में चीन सबसे आकर्षक निवेश स्थल रहा, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत रहा।

0: दोस्तों, फलक से फिर से ज़मीन पर आपको ले आते हैं और बात करते हैं मनुष्य और जानवरों की। मनुष्य और जानवरों का आपसी रिश्ता मानव सभ्यता के विकास के समय से ही रहा है। पशु पक्षी न केवल हमारे मित्र रहे हैं, हमारी कृषि और अन्य कार्यों में सहयोगी भी रहे हैं। लेकिन यह मित्रता और साथ तब घातक बन जाता है जब जानवरों और मनुष्यों को किसी प्रकार का संक्रामक रोग खतरा उत्पन्न होता है।
1: बिल्कुल, और इसी की जागरूकता के हिसाब से आज का दिन खास तौर पर मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस के तौर पे। जी हाँ, हर साल 6 जून को ये दिन मनाया जाता है और इस दिन का मनाने का जो उद्देश्य है वो है लोगों को उन बीमारियों के प्रति जागरूक करना जो पशुओं से मनुष्यों में फैलती हैं। इन्हें जूनोटिक रोग या जूनोसिस कहा जाता है। आज की तिथि इसलिए चुनी गई है ये दिन मनाने के लिए कि इसी दिन वर्ष 1885 में महान वैज्ञानिक लुई पॉश्चर ने पहली बार रैबीज से पीड़ित एक बालक को सफलतापूर्वक टीका लगाया था। चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। श्रोताओं,
0: जी हाँ, जूनोटिक रोग

0: जूनोसिस रोग वह बीमारियां होती है जो जानवर से मनुष्यों को संक्रमण की वजह से फैलती है। इनमें वे जानवर शामिल हैं जो वर्टिब्री होते हैं या जो कशेरुक जानवर होते हैं, जैसे बंदर, चमगादड़, कुत्ते, सुअर, मवेशी, और उनसे होने वाले संक्रामक रोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवियों द्वारा मनुष्यों तक पहुँचते हैं। रेबीज, इबोला, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, एंथ्रेक्स, निपा वायरस और सबसे फेमस कोविड-19, ये वे रोग है जो जूनोटिक रोगों की श्रेणी में आते हैं। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य इसके प्रसार को रोकना, नियंत्रण और निवारण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल दोस्तों, मनुष्य, पशु और पर्यावरण तीनों का स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज वन हेल्थ की अवधारणा का पर जो है वो विशेष बल दिया जाता है। ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए कुछ सरल सावधानियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। पालतू पशुओं का समय समय पर टीकाकरण कराया जाना चाहिए। किसी भी जानवर के काटने या खरोंचने पर तुरंत घाव को साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। बिना देर किए चिकित्सक के पास जाना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। दूध का सुरक्षित उपयोग करना चाहिए और पशुओं के संपर्क में आने के बाद हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
0: साथ ही साथ जंगली और पालतू जानवरों से आप उचित दूरी बनाए रखिए। मानते हैं हम वो आपके मित्र हैं, लेकिन एक उचित दूरी भी जरूरी है। उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है और समय समय पर उनका टीकाकरण करवाना भी बहुत जरूरी है।
1: विश्व जूनोसिस दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्वस्थ समाज के लिए केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि पशुओं और पर्यावरण का स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। जागरूकता, स्वच्छता और समय पर उपचार अपनाकर हम अनेक गंभीर बीमारियों से स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। इसी संदेश के साथ आपको हम आज के दिन के लिए ये बात कहना चाहते हैं कि आप, हम आशा करते हैं, इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान देंगे।

0: दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम में आइए, अब बात करते हैं सप्ताह विशेष के बारे में। आज है सोमवार और सोमवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं विशेष सेगमेंट विज्ञान विश्व। और आज के अपने इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं mRNA कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान की एक ऐसी तकनीक जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के बीच नई उम्मीद जगाई है, यह तकनीक है mRNA कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही मन में चिंता और डर दोनों पैदा हो जाते हैं। वर्षों से इसके इलाज के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी विधियां अपनाई जा रही हैं, लेकिन अब विज्ञान एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां इलाज केवल दवाइयों तक सीमित नहीं है, बल्कि शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को ही कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है।
1: दोस्तों, समय के साथ हमारी जीवन शैली में बहुत बदलाव आए हैं। प्रदूषण और मिलावटी खानों के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में कई रोग हमें घेर सकते हैं। भारत में लगातार कैंसर रोगियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। कैंसर एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है और इसके उपचार के लिए नित नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें एक क्रांतिकारी तकनीक है mRNA ट्रीटमेंट। mRNA ट्रीटमेंट एक्चुअली एक वैक्सीन है जो कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए हमारी ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह पारंपरिक कीमोथेरेपी से अलग है और यह सीधे तौर पर ट्यूमर पर हमला करने की बजाय शरीर को कैंसर से लड़ना सिखाती है।
0: बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि mRNA आखिर है क्या। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इसे आप शरीर का एक संदेश वाहक मान सकते हैं। ये हमारी कोशिकाओं तक निर्देश पहुंचाता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। कैंसर के इलाज में वैज्ञानिक मरीज के ट्यूमर का आनुवांशिक विश्लेषण करते हैं और ये पता लगाते हैं कि कैंसर कोशिकाओं की सबसे अलग पहचान क्या है। फिर उसी पहचान की जानकारी वाला mRNA तैयार किया जाता है।
1: जी हाँ, ट्यूमर की पहचान की जाती है। मरीज के कैंसर ट्यूमर को डीएनए का विश्लेषण करके विशिष्ट म्यूटेशन द्वारा प्रोटीनों की पहचान की जाती है और इसे कहा जाता है एंटीजन। mRNA का निर्माण लैब में विशेष आनुवंशिक संदेश के रूप में तैयार किया जाता है जो इन विशिष्ट कैंसर प्रोटीनों का ब्लूप्रिंट होता है।
0: फिलहाल mRNA आधारित कैंसर उपचार दुनिया के कई देशों में क्लिनिकल ट्रायल के दौर से गुजर रहा है।

0: त्वचा के कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, अग्नाशय के कैंसर और कुछ अन्य प्रकार के कैंसर में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह तकनीक कैंसर उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है।
1: जी हाँ, एमआरएनए का वैक्सीन मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण किया जाता है। शरीर की विशेष कोशिकाएं इस एमआरएनए को पढ़कर कैंसर प्रोटीन की हूबहू नकल बनाती है। हमारा इम्यून सिस्टम इसे बाहरी खतरे के रूप में पहचानता है और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करता है।

यह एंटीबॉडीज टी सेल्स का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज और टी सेल्स रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर असली कैंसर कोशिकाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट करती है। यह वैक्सीन दूसरी वैक्सीन से अलग होती है। आमतौर पर जहां चेचक या पोलियो की वैक्सीन पहले ही लगा दी जाती है, यानी रोग नहीं होता है उससे पहले लगा दी जाती है ताकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जा सके, जबकि एमआरएनए वैक्सीन मरीज को कैंसर होने के बाद लगाई जाती है। यह वैक्सीन पर्सनलाइज्ड होती है क्योंकि हर मरीज का डीएनए और ट्यूमर अलग प्रकृति का होता है, इसलिए इसे कस्टमाइज करके बनाया जाता है। दुनिया भर के चिकित्सक संस्थान इस तकनीक का व्यापक शोध कर रहे हैं ताकि इसे कैंसर के इलाज के लिए एक प्रभावी हथियार बनाया जा सके।

0: दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम में हम आपके साथ साझा करते हैं कई सारी जानकारियां, कई सारी बातें। उनमें कुछ बातें खास होती हैं और कुछ होती हैं काम की बातें। बारिश की रिमझिम फुहारों, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और चारों ओर फैली हरियाली, मानसून का मौसम अपने साथ ताजगी और आनंद लेकर आता है। लेकिन यह मौसम जितना सुहावना होता है उतना ही सजग रहने की भी मांग करता है दोस्तों। थोड़ी सी लापरवाही कई तरह की बीमारियों और दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है।
1: जी हाँ दोस्तों, बड़े इंतज़ार और मिन्नतों के बाद आखिरकार बारिश की फुहारें हमारे शहर पर दस्तक दे चुकी हैं। मानसून आने के साथ ही हमारा दिल खुश हो जाता है। इसकी आहट न केवल धरती की तपिश को कम करती है बल्कि ठंडक का अनुभव भी देती है और नए जीवन का आगमन भी होता है। धरती हरी चुनर ओढ़ने लगती है और प्रकृति में नए जीव जंतु उत्पन्न होने लगते हैं।
0: और ऐसे में जो ज़रूरत है वो सबसे पहले ये है कि हम ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। हमेशा ताज़ा और स्वच्छ भोजन करें तथा उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ पानी ही हमें इस मौसम में पीना चाहिए। ये तो भाई खास बात है जो ध्यान रखने की है। खुले में बिकने वाली जो खाद्य चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल परहेज करना होता है, क्योंकि इस मौसम में हमने अभी संक्रमण की बात की है, तो इस
1: हालांकि
0: मौसम में
1: हमें
0: जो
1: इस
0: है
1: मौसम में बाहर का चटपटा खाना बहुत पसंद आता है, लेकिन उससे बच जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
0: हाँ, क्योंकि संक्रमण का खतरा बहुत अधिक रहता है।
1: और जब बात हम जोधपुर की कर रहे हैं तो जोधपुर में तो मिर्ची बड़े ना खाएं अगर बारिश के मौसम में, तो लगता ही नहीं है कि बारिश आए। लेकिन हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये बीमारियां हैं इस मौसम में बहुत बढ़ने के उनके जो चांस है वो हो जाते हैं। इसलिए कभी आप बाहर का खाना ना खाएं, अगर खाएं तो भी आप देख लें कि वो खाना बहुत ही ढक के रखा गया है या ताज़ा बनाया गया है। और साथ ही साथ तले भुने चटपटे खाने की जगह घर का सात्विक भोजन करें, हाथों को अच्छे से धोएं और खाना बनाएं, और खाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। इससे मच्छर उत्पन्न होते हैं और इन मच्छरों से मलेरिया, डेंगू जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े पहनें। इससे आप ज़्यादा देर तक गीले नहीं रहेंगे और जब आप गीले नहीं रहेंगे तो आप में संक्रमण होने के चांस भी कम हो जाते हैं। वहीं अगर आप बारिश में बाहर जा रहे हैं तो छाता, रेनकोट और बारिश से बचाव के साधन अपने साथ रखें। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसे जूते पहने जो फिसले नहीं, क्योंकि अगर आप जूते फिसलन वाले पहनते हैं तो फिसल कर गिर सकते हैं और आपको चोट लग सकती है। दोस्तों, बारिश का मौसम ऐसा होता है जब आपको पता नहीं होता है कि जो आसपास पानी या जल भराव हुआ है वो कितना खतरनाक है। ऐसे में जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, और अगर आप खुले मैदानों में रह रहे हैं और वहाँ बिजली कड़क रही है तो बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदानों में ना रहें, पेड़ों और बिजली के खंभों से हमेशा दूर रखें। दोस्तों, मानसून का सीजन ऐसा होता है जब आपके घर के जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको जल्दी संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, उल्टी दस्त, इस तरह की कोई भी लक्षण दिखाई दिए तो डॉक्टर को दिखाएं, और समय समय पर जो मौसम विभाग द्वारा प्रसारित सूचनाएं या चेतावनियां हैं उनका बहुत कड़ाई से पालन करना है, उन्हें सुनना है और उनका पालन करना है। तो इस तरह की सावधानियां बरत के आप मानसून में आनंद उठा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।
2: ओ सजना

0: दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम में आइए अब बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप 2026 की, जिसका कि खुमार पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। नार्वे पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। साल 1990 के बाद ऐसा पहली बार है कि ब्राजील राउंडर ऑफ 16 से बाहर हुई है। 5 बार की चैंपियन ब्राजील जारी फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई है। दोस्तों एर्लिंग हॉलैंड ने 2 शानदार गोल करके नार्वे को न्यू जर्सी में राउंड ऑफ 16 के मैच में 2-1 से जीत दिलाई।
1: पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ था और उसके बाद हॉलैंड ने 80वें मिनट में हेडर के जरिए स्कोर की शुरुआत की। उन्होंने 90वें मिनट में बॉक्स के बाहर एक शानदार गोल करके नॉर्वे की बढ़त को दुगना कर दिया। नेमार ने इंजरी टाइम में एक पेनल्टी पर गोल किया। ब्राजील के मिडफील्डर ब्रूनो गुइमारेस ने 14वें मिनट में एक पेनल्टी मिस कर दी, जबकि सब्स्टिट्यूट एड्रिक ने विनीसियस जूनियर के शानदार पास के बाद एक सुनहरा मौका गवा दिया।
0: नार्वे का एक गोल भी मैच के 3रे मिनट में ऑफ साइड के कारण रद्द कर दिया गया था। नॉर्वे ने सबसे पहले 1938 में वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था।
1: नॉर्वे का यह चौथा वर्ल्ड कप है और टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। ब्राजील 1990 के बाद पहली बार राउंड ऑफ 16 स्टेज से बाहर हुई है और उसका इंटरनेशनल फुटबॉल में नॉर्वे को कभी ना हराने का सिलसिला जारी है।

0: दोस्तों नमस्कार कार्यक्रम में आइए, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनकी आज जन्म जयंती है। सबसे पहले हम बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। भारत के प्रख्यात शिक्षाविद, राष्ट्रवादी चिंतक और राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज ही के दिन 1901 कोलकाता में उनका जन्म हुआ और कम ही अपनी उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के वे कुलपति बने और शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय सरकार में उन्होंने उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। वर्ष 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति उनके विचार आज भी याद किए जाते हैं।
1: जी हाँ, और आज ही के दिन 125वीं जयंती उनकी मनाई जा रही है, और साथ ही साथ राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा और उनके आदर्शों में विश्वास रखने वाले करोड़ों देशवासियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। और आज ही के दिन हम याद कर रहे हैं लक्ष्मीबाई केलकर को। छह जुलाई 1905 का दिन था जब लक्ष्मीबाई केलकर का जन्म हुआ। वे नागपुर महाराष्ट्र में जन्मी और स्त्रियों के लिए राष्ट्र सेविका समिति का गठन करने वाली प्रख्यात समाज सेविका बनी।
0: सतो गुण सदा तेरी पहचान हो, कि रूहानियत तेरा ईमान हो। कुआं तू न बन बल्कि सैलाब बन, जिसे लोग देखें वही ख्वाब बन। तुझे वेद की कोई हाजत न हो, किसी को तुझसे कोई चाहत ना हो। यह गीता के श्लोक का उर्दू शायरी अनुवाद है दोस्तों, जिसे किया है यशस्वी भारती सम्मान से सम्मानित मशहूर शायर अनवर जलालपुरी साहब ने, जिनकी के आज जन्म जयंती है। उर्दू दुनिया की नामचीन हस्तियों में शुमार अनवर जलालपुरी मुशायरों की निजामत के बादशाह थे।
1: यश भारती सम्मान से सम्मानित उर्दू के मशहूर शायर, मुशायरों की जान माने जाने वाले अनवर जलालपुरी ने राहरों से रहनुमा तक उर्दू शायरी में गीतांजलि, भगवत गीता के उर्दू संस्करण उर्दू शायरी में गीता पुस्तकें लिखी, जिसे बेहद सराहा गया। उन्होंने अकबर द ग्रेट धारावाहिक के संवाद भी लिखे। अनवर जलालाबादी का जन्म आज ही के दिन 1947 में जलालपुर में हुआ था।

उनका वास्तविक नाम था अनवर अहमद। उनका यह कहना था कि साहित्य, दर्शन और धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू से मेरी आदत में शुमार था, और गीता मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें दार्शनिक रोशनी के साथ साहित्यिक चाशनी भी है। उनकी तर्जमानी के दौरान मैंने महसूस किया कि दुनिया की तमाम बड़ी किताबों में तकरीबन एक ही जैसा इंसानियत का पैगाम है। उर्दू शायरी में गीता, जोश अखीरत, उर्दू शायरी में गीतांजलि, जागती आंखें और हरफे अबजद उनकी प्रमुख रचनाएं रही।

0: दोस्तों, आज है 6 जुलाई का दिन और अब हम याद कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने आज के दिन इस फानी संसार को अलविदा कहा। और इसी कड़ी में पहला नाम है अमृतलाल बेगड़ का, साहित्यकार और चित्रकार और साथ ही नर्मदा प्रेमी। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए इन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और आज ही के दिन सन 2018 में इनका निधन हुआ।
1: इसी क्रम में हम आज याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक चेतन आनंद को, जिनका कि आज पुण्य स्मरण दिवस है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी चेतन आनंद को बॉलीवुड फिल्मों के आज का जो स्तर है, इस पर पहली बार पहचान दिलाने का श्रेय जाता है। चेतन आनंद सदाबहार अभिनेता देव आनंद के बड़े भाई थे। 3 जनवरी 1915 को पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे चेतन आनंद दून स्कूल में शिक्षक के रूप में भी कार्यरत रह चुके थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रिया राजवंश चेतन आनंद की सहयात्री थी, दोनों जिंदगी भर साथ साथ रहे। वर्ष 1940 के दशक के शुरू में सम्राट अशोक पर एक फिल्म की पटकथा उन्होंने पहली बार लिखी। और बात करें उनके फिल्मी सफर की, तो वह वर्ष 1944 में आई फणी मजूमदार की फिल्म राजकुमार से शुरू हुआ। उस फिल्म में वह मुख्य भूमिका में थे। चेतन ने अभिनय छोड़कर निर्देशन के क्षेत्र में किस्मत आजमाई और जल्द ही उन्होंने इतिहास रच दिया।

1950 के दशक के शुरू में उन्होंने अपने छोटे भाई और उस जमाने के मशहूर अभिनेता देवानंद के साथ नवकेतन प्रोडक्शन के नाम से एक फिल्म कंपनी की स्थापना की। इस बैनर ने बॉलीवुड को अफसर, टैक्सी ड्राइवर और आंधियां, हकीकत हीर रांझा जैसी फिल्में दी। हिंदुस्तान की कसम जैसी कई अच्छी फिल्में भी इन्होंने बनाई। इसके अलावा काला बाजार, किनारे किनारे, आखिरी खत, कुदरत, हाथों की लकीरें फिल्मों में चेतन ने विभिन्न भूमिकाओं को भी अंजाम दिया। उन्होंने वर्ष 1988 में परमवीर चक्र नाम से एक धारावाहिक भी बनाया था। बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि चेतन आनंद की पहली फिल्म नीचा नगर को पाम दी ओरे सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। हिंदी फिल्म जगत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की शुरुआत करने वाले इस कलाकार ने आज ही के दिन यानी 6 जुलाई 1997 को 82 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा।

0: श्रोताओं, इसी के साथ नमस्कार कार्यक्रम का अंक बस यहीं तक। अब अपनी दोस्त अर्चना चौहान को
1: और हेमलता को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। लोक संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं छाया बोहरा को।

अभी आपने सुना लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं गुरदास मान को।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में फिल्म बेताब से सुनिए गीत, आनंद बख्शी के बोल, आदि बर्मन का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म जानवर से अभी आपने सुना ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में फिल्म लोफर से सुनिए गीत, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खानदान से सुनिए गीत, नक्श लयालपुरी के बोल, खयम की संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म प्रोफेसर से अभी आपने सुना ये गीत, हसरत जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

फिल्म राजकुमार से अभी आपने सुना ये गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म घर से सुनिए गीत, गुलजार के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

फिल्म प्यार ही प्यार से सुनिए गीत। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीतकार हैं शंकर।

0: फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए, हम आपके हैं कौन फिल्म से। इसे गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने।
1: नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत। सीमा मिश्रा की आवाज़ में सुनिए ये लोक संगीत।

निर्मल मिश्रा की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोक संगीत। लोक संगीत का आखिरी गीत सुनिए चंपा मेथी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

आतिफ असलम की आवाज में अभी आपने सुना ये सुगम संगीत। अभिजीत की आवाज में सुनिए अगला सुगम संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सहकारिता मंत्रालय का पांचवा स्थापना दिवस समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत ये समारोह रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन और टिश्यू कल्चर केन्द्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरूआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध पूर्ति डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शी और आधुनिक व्यवस्थाएं की गई है। सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 साल से सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चलकर करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इस क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं। देश को सहकार से समृद्धि का मंत्र मिला जिसने गांवों, गरीबों, किसानों और मजदूरों को उन्नत बनाया।
2: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
1: गौरतलब है कि सहकारिता क्षेत्र में राजस्थान में हुए नवाचार और विकास कार्यों ने देश भर में विशेष पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज

0: आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और इन देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी इंडोनेशिया पहुंचेंगे। श्री मोदी वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को संबोधित भी करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुंचेंगे और 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कार्यक्रम डॉ मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष घोषित 2 वर्ष के आधिकारिक समारोह के तहत हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह और संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। डॉ मुखर्जी की जयंती के मौके पर राज्य में भी विभिन्न आयोजन रखे गए हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ विचार गोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। देश में 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान है, जो व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली रोगियों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इसके माध्यम से रोगी अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क का विस्तार करके देश के रोगियों और स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करना है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूरी तरह से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा एनईटी यूजी 2026 की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा कल तक के लिए बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपना बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गौरतलब है कि प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद इस साल 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द होने के बाद एनटीए द्वारा रिफंड प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाइया ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम सा। किसान भाइया खेती बाड़ी जी का काम काज है व्यापक करे जहाँ। किसान भाइया आज आपने जानकारी दी रहा कंपोस्ट अपनाए मृदा स्वास्थ्य बढ़ाए इस वास्ते कार्यक्रम में पधारिया है डॉक्टर ओपी मीना। आप मृदा वैज्ञानिक है काजरी जोधपुर रमैने। मीना जी राम राम।
1: राम राम सा।
0: सगला सू पहला बात आवे किसान भाई रे सामी के वे खेती बाड़ी रे काम काज तो करे है पर ज्यू आज की कंपोस्ट है आ कहीं हुआ करे।
1: नमस्कार सर, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा मैं एक मृदा वैज्ञानिक के साथ साथ एक किसान का बेटा भी हूँ और इसके नाते मैं किसान भाइयों और बहनों से ये बात साझा करना चाहूंगा कि कंपोस्ट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेटिव मूड मतलब कितना परसेंट क्या चीज बढ़ाता है इफेक्टिव कहाँ रहता है।
0: हाँ,
1: तो रासायनिक उर्वरकों जो दक्षता एफिशिएंसी है उसको कंपोस्ट अगर उपयोग करते हैं अपन तो 20-30% तक यह रासायनिक उर्वरकों की उपयोग दक्षता बढ़ाता है। जो मृदा में सूक्ष्म और लाभकारी जीव है
0: हाँ,
1: उनको 50-200% तक बढ़ा सकता है। केचू की संख्या की बात करें तो 2-5 गुना तक ये बढ़ा देता है।
0: हाँ,
1: और बात करें हम जल धारण क्षमता की मिट्टी की
0: हाँ,
1: तो 10-25% तक बढ़ जाती है एक अच्छी गुणवत्ता का कंपोस्ट उपयोग करने से। साथ ही रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता 20-30% तक कम की जा सकती है। फसल उत्पादन में 5-20% तक वृद्धि देखी गई है। सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है
0: हाँ,
1: जो मिट्टी की भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों का आधार है उसमें 3-5 वर्ष में 10-30% तक बढ़ा जा सकता है अगर अच्छा ही कंपोस्ट

0: कंपोस्ट किसान भाई उपयोग में लाए तो।
1: हाँ अमीना जी के जो किसान भाई कंपोस्ट काम रे मैंने लेवे, मिट्टी जी की टॉप सोइल है, उन्नी जी की गुणवत्ता है, उन रे मैंने वृद्धि होवे, और साथ ही जो आप बात बताई उपजाऊपन जी को है मिट्टी रो वो भी बढ़े। किसान भाई जी का कंपोस्ट रो उपयोग आप रे खेतों रे मैंने करनी चाहे, वे मिट्टी रे स्वास्थ्य ने किन तरह से कंपोस्ट जी को है सुधार करिया करे।
0: किसान भाइयों को, जैसा कि आपका पहला प्रश्न था कि कंपोस्ट होता है क्या है,
1: हाँ
0: तो इससे पहले सर मैं ये किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ। तो कंपोस्ट एक गोबर, फसल अवशेष या सूखी पत्तियां, रसोई का जैविक कचरा जो भी होता है, अन्य जैविक पदार्थों के नियंत्रित अपघटन से जो बनने वाला पदार्थ है
1: हाँ
0: उसको अपन कंपोस्ट कहते हैं सर। कि भाई उपयोग क्यों करना चाहिए
1: सही बात
0: और
1: है।
0: मिट्टी का सुधार कैसे होता है। जो कंपोस्ट में ऑर्गेनिक कार्बन होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, वो मृदा में उपस्थित

0: ऑर्गेनिक कार्बन होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, वो मृदा में उपस्थित जो भी पोषक तत्व है उनको परोसने का काम करता है पौधे को, जिससे कि पौधा स्वस्थ और अच्छी वृद्धि करता है।
1: कंपोस्ट जी को है और रासायनिक उर्वरक ने कितनी बचत करा सके, मतलब
0: जैसा कि मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि रासायनिक उर्वरक अपन 20 से 30% तक कम किया जा सकता है अगर एक अच्छी गुणवत्ता वाला कंपोस्ट यूज में लाएं तो। और इसके साथ ही ये उर्वरक की जो उपयोग दक्षता है उसको भी बढ़ाता है,
1: हाँ
0: पोषक तत्वों का जो नुकसान होता है उसको भी कम करता है, साथ ही खेती की लागत भी कम करता है।
1: सही बात बतीसा मीना जी के बहुत तरह सु जी को ओ कंपोस्ट है किसान भाई वास्ते फायदो पहुंचाया करे। तो हमें बात आवे के कई और जी को कंपोस्ट है ओ केवल पोषक तत्व तो दिया करे।
0: नहीं सर, इसमें कंपोस्ट का सबसे बड़ा कार्य पोषक तत्व देना नहीं है
1: हाँ
0: बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारना है। यह मिट्टी में जैविक जो कार्बन है उसको बढ़ाता है,
1: हाँ
0: केचुओं की संख्या बढ़ाता है, लाभकारी बैक्टीरिया फफूंद को सक्रिय करता है, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही मिट्टी की संरचना एवं जल धारण क्षमता में सुधार भी करता है।
1: मिट्टी में मैंने ज्यादा से ज्यादा जी को जल धारण है ओ हुए तो उनसे कई वेला के जी की फसल आवे उंडी जी की पैदावार है आप भी बढ़िया व्या करे। साथ ही अभी बात आवे कि भाई किसान भाई कंपोस्ट काम में लेनी चाहे तो वे कंपोस्ट कदे और कितनी कितनी मात्रा रे महीने आप रे मिट्टी रे महीने खेत रे महीने डाले।
0: किसान भाइयों, अगर आपको कंपोस्ट काम में लेनी है, जनरली कंपोस्ट मुख्यतः हम खेती की तैयारी जब करते हैं
1: हाँ
0: मानसून से पहले तो उस टाइम उपयोग में लाई जाती है, बुवाई से लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले।
1: अब हरू होगी सा लगभग।
0: हाँ, अब से पहले 1 हफ्ते पहले
1: हाँ
0: शुरू। इस बार थोड़ी बारिश लेट है
1: देरी होना
0: लेकिन
1: सा।
0: अभी कर सकते हैं। अच्छी तरह से सड़ी हुई जो कंपोस्ट है उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए। सामान्यतः 2 से 5 टन प्रति हेक्टेयर जो
1: हाँ
0: कंपोस्ट उपयोग में लाया जाता है। और बागवानी फसलों की अपन बात करें, पौधे की आयु और आकार के अनुसार मात्रा निर्धारित की जाती है।
1: सही बात है भतीसा। हमें किसान भाई कंपोस्ट काम में लेवनी चाहे, किसान भाई चाहे कि भाई बढ़िया बढ़िया जी की कंपोस्ट है उनरी काम में लेवा उपयोग में लेवा तो वे उनरी जी की पहचान है वह किन तरह से कर सके।
0: अगर अच्छी कंपोस्ट देखने से ही अपन को पता लगाना है कि भाई अच्छी कंपोस्ट है तो उसमें मुख्यतः कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि उसका रंग जो है वो गहरा भूरा या काला होना चाहिए, उसमें मिट्टी जैसी प्राकृतिक खुशबू आनी चाहिए, तापमान सामान्य होना चाहिए, उसमें गोबर या पत्तियां या जो भी अवशेष है वो दिखने नहीं चाहिए, कंपोस्ट भुरभुरी होनी चाहिए और उसमें दुर्गंध बिल्कुल नहीं आनी चाहिए।
1: मीना जी कई दान कई किसान भाई सोचे कि भाई बाजार जा वार कंपोस्ट लेर आ वार कर आर या नहीं ला सके करे तो वे सोचे कि भाई क्यों नहीं मैं अपने घरे या अपने खेत में एडी कंपोस्ट अपना तैयार कर सका किन तरह से तैयार कर सके।
0: इसमें बिल्कुल सा किसान अपने खेत में ही तैयार कर सकता है अच्छी गुणवत्ता वाला कंपोस्ट जिसे
1: हाँ
0: खाद कहते हैं, उसमें गोबर, फसल अवशेष, सूखी पत्तियां और रसोई के जैविक कचरे की परतें बनाकर उनमें उचित नमी बनाए रखनी पड़ती है,
1: पानी रो छिड़काव करना
0: पानी रो
1: पड़े।
0: बीच बीच में छिड़काव करता रहना पड़ता है
1: हाँ
0: और हर 15 से 20 दिन में उसको पलटाई करते हैं,
1: अच्छा उलट पुलट
0: पलट
1: करे।
0: उलट पुलट करते हैं
1: हाँ
0: जिससे कि डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से हो सके। लगभग 2 से 3 महीने में एक अच्छी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। अब मैं एक और बात बताना चाहूंगा किसान भाइयों को, जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है,
1: हाँ
0: जल्दी और अच्छी गुणवत्ता का कंपोस्ट अगर बनाना है तो उसमें गुड़, देसी गुड़ जो होता है, खाटी छाछ और गौमूत्र, इन तीनों का मिश्रण
1: गोल
0: घोल बना के और जैसे अपन पानी का छिड़काव करते हैं
1: हाँ
0: उस तरीके से इस चीज का भी मिश्रण का छिड़काव करें, या फिर वो ढेरे कंपोस्ट का जो ढेरा है
1: कंपोस्ट
0: उसमें पाइप की सहायता से या डंडे की सहायता से होल करके और उसके अंदर तक उस मिश्रण को जाने दें।
1: आप तैयार कर रहे हो वो पाइप के माध्यम आप उन्हें जाऊं दो घोल ने।
0: हाँ,
1: हाँ
0: ये जो घोल है ये
1: हाँ
0: काम करेगा, ये कल्चर होता है सूक्ष्म जीवों का जिससे कि डिकम्पोजिशन फास्ट होगा और आपको अच्छी गुणवत्ता वाला कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। ये छिड़काव करने के बाद आप और जल्दी अगर तैयार करना चाहते हो, उसका जो तापमान है और अधिक बढ़ा के और डिकम्पोजिशन फास्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो तिरपाल आता है
1: हाँ
0: किसान भाई, वो तिरपाल से उसको ढक के और भी जल्दी खाद तैयार कर सकते हैं।
1: तिरपाल ढकना तो जी को टाइम ज्यादा लगे वो तिरपालू कम लग गया करे और कंपोस्ट बेगो तैयार हो
0: उससे क्या
1: जाया
0: होता
1: करे।
0: है, सूक्ष्म जीव तेजी से कार्य करते हैं और कंपोस्ट जल्दी तैयार होती है।
1: ओपी मीना जी और हमें किसान भाई इरी कोशिश रहे कि भई मैं पैदावार बढ़ावा, कंपोस्ट हो खाद जी को आप बतायो हो ओ खेतर में इन्हें काम काज में लेवा। हाथ हाथे वानी लगे कि भई एक दिखे ने अपना कंपोस्ट भी डालना खेत्र में इन्हें, और कई दान सोचे कि भई फसल और ज्यादा वे माने खेत्र में इन्हें बड़ा पो करे तो रासायनिक उर्वरकों भी वे उपयोग करनी चाहे। तो मारो प्रश्न आपसू ओ है कि कहीं कंपोस्ट और रासायनिक उर्वरक दोनों एक साथ किसान भाई उपयोग कर सके?
0: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसको हम

0: आधुनिक तकनीक बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट
1: तो
0: INM,
1: इनसे कोई लाभ ज्यादा हुए?
0: उसमें लाभ ऑफ कोर्स ज्यादा होता है। जो खाद है उसमें उपस्थित जो कार्बन है वो आपको जो रासायनिक उर्वरक में जो पोषक तत्व होता है उसको अच्छे तेजी से पौधे को उपलब्ध कराता है।
1: हाँ,
0: जिससे कि उत्पादन बढ़ता है, लागत भी कम होती है, मिट्टी स्वस्थ रहती है, उर्वरकों की दक्षता भी बढ़ती है और खेती लंबे समय तक अगर लाभकारी रखनी है तो हाँ, दोनों का समावेश करना ही सही खेती
1: तो
0: कहलाती है।
1: कोई मात्रा रहे है? कंपोस्ट इतना प्रतिशत होना चाहिए या रासायनिक उर्वरक इतना प्रतिशत होना चाहिए, ऐड तो नहीं है कि?
0: जनरली सर जो कंपोस्ट अपन डालते हैं वो तो जो भी मैंने 3 से 5 टन प्रति हेक्टर की बात की है वो तो अपने मृदा के स्वास्थ्य के हिसाब से रेगुलर डालना ही चाहिए।
1: तो ओपी मीना जी, हालता हालता आप माने किसान भाई ने जी को संदेश देनी चाहो, कहीं आप भड़ाउन देनी चाहो?
0: मेरा किसान बहन और भाइयों को यही संदेश है कि मिट्टी हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: हाँ,
0: यदि आज हम मिट्टी का ध्यान रखेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ खेत मिलेंगे। इसलिए फसल अवशेष कभी ना जलाएं, अधिक से अधिक कंपोस्ट तैयार करें, जैविक पदार्थ मिट्टी में वापस मिलाएं, नियमित मृदा परीक्षण कराएं, साथ ही संतुलित उर्वरक प्रबंधन अपनाएं। अंत में मैं केवल एक बात ही कहना चाहूंगा,
1: हाँ?
0: मिट्टी स्वस्थ होगी तो पौधा स्वस्थ होगा, पौधा स्वस्थ होगा तो किसान समृद्ध होगा और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। इसलिए आइए कंपोस्ट अपनाइए और मृदा स्वास्थ्य बढ़ाइए। धन्यवाद।
1: बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रही ओपी मीना जी, आप कार्यक्रम में पधारिया। कंपोस्ट अपनाए, मृदा स्वास्थ्य बढ़ाए, इन विषय माते आप जानकारी दे रही, इन वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।
0: राम राम सर।
1: कृषि जगत कार्यक्रम रो भगत पूर्व वेरियो है दिनेश राणे जाने शेख दिराओ। राम राम।

0: सबने इन मौसम इंतजार रहे और सब आपरे तरह इन स्वागत करे।
1: बिल्कुल। और देखो आषाढ़ महीनो जद आवे नी पूनम जी, तो कालिदास रे मेघदूत जिकी है काव्य जिको लिखोड़ा है वो याद आ जाया करे कि जद मेघदूत पर जब मैं लिखियो हो तो वो जिको काव्य हो वो बहुत ही चर्चित रही हो। और आज भी आषाढ़ जब पहलो दिन आवे तो कालिदास जी की रचना ही मेघदूत वह हमेशा पढ़न रो मन करया करे। तो आज आप कालिदास रचना तो नहीं पढ़ पावला, पर अबार एक सखिया ने गीत जिको है बारिश रो वो जरूर सुना वाला।

0: तो पूनम जी उमड़ घुमड़ बादल जिगा है, आसमान में बाज रिया है। और अबार तो आप देखा कि बिजली री समस्या जी की आप बन ज्यादा हो जाए, क्योंकि मौसम रे माए बिजली है जी की काट दी जावे। और एक बात तो भी है कि बिजली री समस्या ऐसा कि आकाश से बिजली री भी बहुत ज्यादा परेशानी होया करे, तो इसको भी अपन ने बहुत ज्यादा सावधानी रखना है।
1: खासकर जो खेता में काम करे मैंने ज़्यादा सावधानी रखनी, इनसे जुड़ी जो भी सावधानियां आपने नियमित तौर पर सोशल मीडिया पर मिलती रहा करे, तो आप मैंने पढ़ो और उनसे जुड़ी जो भी जानकारी वह लेना, आप सावधान रहो।
0: और एक बात और भी है कि इन मौसम में अगर आपने कोई जरूरी काम नहीं है तो आप बाहर मत निकलो। खासकर जब आप देखा कि युवा जी का है, बे सोचे इन मौसम में मैं बाहर है जगह घूम रहा हूँ, घूमना अच्छी बात है, पर इन तरह से आप कोई पहाड़ा पर या नदियाँ रे किनारे या तेज वाहन चला रहे आप सोचो कि आनंद ले रही हैं, तो वो आनंद जी को है कोई भी दुर्घटना है जी घटा सके। तो इन मौसम ने आप दुखद मत बनो, सुखद बनाने वास्ते आप घर छत पर भी आनंद
1: आनंद
0: ले
1: ले
0: सको,
1: सको।
0: या घर के आसे पासे कोई पार्क है वटे भी आप सखी सहेलियां सके जा पर आप बातचीत कर सको। और एक बात और ध्यान रखना पूनम जी कि टाबरिया ने भी यह चीज सिखानी है कि घर के आसे पासे अगर कोई खुला जहाँ तार वार है तो वटे नहीं खड़ो होने, अगर बिजली चमक रही है तो आप कोई भी टीन के नीचे मत खड़ा हो, मतलब थोड़ी सी सावधानियां रखनी बहुत ज्यादा मतलब कहनी जरूरी है, नहीं तो कहीं है कि घटनाएं आप देखा नहीं अखबार रे माए पापा डाई यहाँ कि इस तरह से घटना घट गई, इस तरह से हादसा हो गया, तो वो आपने मतलब फिर मन है जिसको खराब कर दे, तो फिर अपन डर भी लगन लग जाए कि अरे बारिश रो मौसम आ गया, तो अपने बारिश रो मौसम ने आनंददायक बनाना है
1: बिल्कुल, और
0: ना
1: मौसम
0: कि
1: ही एड़ो है
0: चिंताजनक।
1: सुहावनो के, मतलब इन आनंद ले हो आप, कुछ भी एड़ो काम मत करो कि वो आपरे वास्ते कुछ एड़ी परेशानी खड़ी कर दे जिनसे आप इन आनंद नहीं ले पाओ, और आपरे मन रे मायने रहे कि काश मैं भी इन बरसात रे मायने इन आनंद ले सकता।
0: हाँ तो जब आप आनंद की बात कर रहे हैं पूनम जी, तो देखो हर सखी जी के यानी मेरे भीतर एक केवल प्रतिभा एक अनमोल खजानो छिपोड़ा हुआ करे, चाहे वो बारिश रे मौसम से संबंध कर लो, अगर बारिश रे मौसम में अपने सखियां जी की है तो पकवान बना पर अभी कवे नहीं बहुत तरह की चीजा बना।

0: और एक रोज़गार है जो को चालू कर सके। और इसके अलावा आप देखो अपा जी अभी गर्मी की छुट्टियां ही तो विन में बहुत सारी सखियां हैं, सिलाई कढ़ाई जिकी है वो काम करियो, घर में मेहंदी सिखाने रहे, समर कैंप जी कहा है वे आपा देखा कि बच्चा है ज्वाइन करिया, और अधिकतर महिलाएं जिकी है वे समर कैंप चलाया करे क्योंकि वो में हाथ में हुनर रुया करे।
1: बिल्कुल
0: और आज अपा जो कार्यक्रम ले रहे हैं वो इन प्रकार हुनर ही बात करना भी रमाए।
1: बिल्कुल सही क्यों आराधना जी। और एक जो महिला होवे वा जाने छोटी बच्ची होया करे उन समय से रमन रमाई ने एक हुनर जागण लाग जाया करे। छोटी बच्ची ने आप अक्सर देखा हुआ गुड्डा गुड्डी रो खेल खेले वेण शादी रचावे या वेण कपड़ा बनाना छोटा छोटा जो बर्तन होवे विण माई ने खानो बनाना। तो एक और जिको मन रमाई ने और शौक होया करे वो ही आगे चाल ले विण हुनर ने संवारे और आगे बढ़ने वेण जिकी शक्ति है वह दया करे। तो आज जो कार्यक्रम है वो महिला वाली सतरंगी उड़ान और उनारे सपनारी वापसी रही है। तो मतलब वे कोई भी ऐडो समय नहीं है कि जब वे सोचे कि अब मैं वो काम नहीं कर सकूं, वे
0: बिल्कुल।
1: जने भी चाहे वे आपने हुनर ने आगे बढ़ा सके और वो काम है जी को शुरू कर सके।
0: और देखो पूनम जी की बहुत बार यहाँ भी लगे सख्या ने कि भी मैं लोग बहुत बड़ा जिका कहवे नहीं एजुकेशन लियोड़ा कोनी या बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लियोड़ी कोनी तो मैं शायद आत्मनिर्भर नहीं बन सकाला या कोई अपनी नई मंजिल जिके वह हासिल नहीं कर सकाला। तो यहाँ नहीं है, आप अगर कम शिक्षा लियोड़ा और आप अगर हाथरो हुनर है तो भी आप आगे बढ़ सको क्योंकि संभावना है जो कि कठे भी जन्म ले सके। केवल आप ये सोचा कि मोटी मोटी डिग्रियां ले ली बड़ी बड़ी कॉलेजें में अगर आप पढ़ा तो ही आप अपना व्यवसाय चालू करा या आप अपने पहचान बनावा तो यह नहीं है। आप रे अंदर खुद रे अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, अगर आप रे अंदर शक्ति है तो आप आगे बढ़ सको चाहे वो फिर किसी भी क्षेत्र हो। तकनीक जिकी है वह अपने एक बनी नयो रोजगार देवे पर भी तकनीक ने काम में लेनो अपने खुद में अंदर क्षमता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल जब आप तकनीक की बात कर रहे हो तो तकनीकी दुनिया रो एक नियम है, कोई भी मशीन या सॉफ्टवेयर होवे तो अगर वो कुछ समय रे वास्ते रुक जावे तो इनरो मतलब ओ कोनी है कि वो बेकार हो गयो या खराब हो गयो है, बस एक सही रीस्टार्ट और थोड़े से अपग्रेड की जरूरत होया करे। और आईज बात उन सख्या पर भी लागू होवे जे की परिवार की खातिर एक अंतराल लियो है, तो वो अंतराल खाली रुकन वास्ते नहीं लियो है, बिना अंतराल में आप अपना आपने और ज्यादा मजबूत बनाने आगे बढ़ सको।
0: बिल्कुल, एक बहुत सुंदर विचार है कोको सनेल रो कि महिला हमेशा ही दुनियारी ताकत पर हस्ती रही है।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर से गणगौर। सपना ने उड़ान जद ही मिले जद हुनर ने सही दिशा और सही मार्गदर्शन मिले। आज रन विशेष कार्यक्रम में बात कराला इसी ही एक क्षेत्र री जो रचनात्मक आत्मनिर्भरता और रोजगारों नयो अवसर दरवाजा खुलिया है, तो वो दरवाजो है कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग रो। तो आज आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में मौजूद है श्रीमती नीतू टाग जी, राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर रे कॉस्ट्यूम डिजाइनर एवं ड्रेस मेकिंग विभाग रा वरिष्ठ फैकल्टी है। वर्षारे अनुभव रे सागे आप रे अनेक छात्र जिका है वे आपसे हुनर सीखे है, आत्मविश्वास बढ़ायो है खुदरो और सागे ही सागे माने पैरा पर खड़ा होने रे भी एक प्रेरणा दी है। तो नीतू जी आकाशवाणी जोधपुर स्टूडियो में आए आप रो घणे मानसू स्वागत, घना घना राम राम।
1: आकाशवाणी सुनन वाला सभी श्रोता ने मारा भी राम राम सा।
0: तो नीतू जी कोई भी प्रेरणादायक जिको सफर हुए बिन समझण वास्ते बिन शुरुआत है जिकी जानने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहला आप रो जिको बचपन है, आपरी शिक्षा दीक्षा, आप रो जिका मतलब परिवार हो, जिको बैकग्राउंड हो, बिहार बारे में थोड़ो सो श्रोताओं ने बताओ।
1: मैं जोधपुर ही जाई जन्मी हूँ सा, जोधपुर शहर में ही मारो जन्म हुई और अटे ही मारी सारी शिक्षा दीक्षा हुई, स्कूलिंग मारी SPS स्कूल हुई और केन कॉलेज में मारो BSc होम साइंस में ग्रेजुएशन करी ने पचे आगे जाने में महिला पॉलिटेक्निक जोधपुर हूँ 3 साल रो डिप्लोमा करियो।
0: तो जिकडम आप डिप्लोमा करने रो से सोचो तो बिन समय कोई विशेष आपके दिमाग में कोई विचार चल रहा?
1: नहीं, उस समय तो ऐसे कोई विचार नहीं थे आराधना जी, पर क्योंकि मैंने BSc होम साइंस करी थी तो बैक ऑफ माइंड में तो था कि मुझे इसी लिंक में आगे चलना है, तो उन्हीं वास्ते मैं हाथ पग मारिया ढूंढियो जोधपुर में MSc ही कोनी उन टाइम। अच्छा, पेरेंट्स जरूर कहो कि आप बारे जान MSc कर लो, पर वही चीज की लड़की हूँ, शादी हो जाए, मम्मी पापा हूँ, दूर जाऊं प्री, तो मैं जोधपुर ही रहनी चाहती। तो मैं हमारी फ्रेंड्स रे हाथे ढूंढियो, 2-व्हीलर माते जोधपुर में खूब घूमी तो ध्यान पड़ी कि महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है जटे डिजाइनिंग फील्ड में डिप्लोमा कराया जा रहा है। तो मारे तो बच्चे साथ में आसमान माते कि अच्छा मेरी पसंद का मिल गया मुझे, और मैंने एडमिशन के लिए पूछा पापा को, पापा जी भी कह दियो कि नहीं आप एडमिशन ले लो।
0: तो आपने कहीं डिजाइनिंग वगैरह में पहले शुरू से शौक हो?
1: हाँ, डिजाइनिंग शुरू शौक हो क्योंकि घर में देखो 5 बहन एक

0: मेरी सबू छोटी बहन, और सभी बहना में अपना अपना अलग अलग हुनर। माँ भी सारे टाइम सिलाई कढ़ाई बुनाई करते दिखती, तो जिमू जिको अच्छी चीज मन्ने मिली मैं वाह ग्रेस्प कर ली। क्या दीदी अच्छी करे कुकिंग करे मैं कुकिंग सीख ली, आ डिजाइनिंग करे मैं डिजाइनिंग सीख ली, मम्मी कशी तो बहुत अच्छो करता। और इन सब चीजा में मैं पेशेंस मारे ब्रदर उन मारे पापाओं सीखी कि कोई भी चीज करो लगन करो अच्छी तरह करो, जो को काम जिन टाइम माते करना है उन टाइम माते करो। मारे पापा आर्मी में हाथ, तो डिसिप्लिन तो पूरो माने रग रग में भरियोड़ो है।
1: मतलब आप कला क्षेत्र में जिका जुड़ाव हुए आप वो बचपन सु ही रही,
0: बिल्कुल बचपन उसू तो
2: मतलब शुरुआती जो शिक्षा आप ले रहे थे उन्हीं समय दिमाग में आप सोच ली थी कि मैंने
0: बिल्कुल
2: इन करियर में ही आगे बढ़ना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। 10वीं की छुट्टियां में 3 महीना की छुट्टियां होती उन टाइम में, तो मम्मी बोलियो कई करी बेटा तू, मम्मा सिलाई सीखूंगा सीधो आई जाए। और घर रे कने जी को एक लेडी ही वाणे कने जान, मैं सिलाई कढ़ाई बुनाई थोड़ी थोड़ी सीखनी शुरू कर दी।
1: बिल्कुल।

0: कोई भी मैंने प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी।
1: तो नीतू जी, जी हाँ, अभी आप बोले परिवारों से होगी, तो आपने कहीं लगे कि कोई भी आप करियर में या कोई भी फील्ड में, जब या घर ही अगर बात कर लें आप, कि घर में भी अगर कोई अपने सहयोग देवे तो भी काम ज्यादा आसानी हुए।
0: बिल्कुल सही, ऐसा घर में जब तक सहयोग नहीं मिला, जब तक लड़की खासकर आगे नहीं बढ़ सके ऐसा, और लड़कियां ने खुद रही प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ी कि मैंने और करना है, मैंने और नहीं करना है। आप रो दिमाग हूँ, मानसिक तौर हूँ, पूरा प्रिपेयर रहनो है, वाणे पूरी तरह हूँ, सोच समझने आप रो काम करना है, आपकी पढ़ाई करनी है, आप रो खुद रो क्षेत्र चूज करना है।
1: बिल्कुल, एक
0: बिल्कुल
1: बहुत अच्छी थिंकर है रोजा पार्क बने, एक बहुत अच्छी लाइन भी है कि जब आप कोई सही काम कर रहा हो तो आपने कभी भी कोई चीज डरना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: आप जी की अभी आप जी की बात बताइए, वह एकदम ठोट पर
0: सटीक,
1: परफेक्ट
0: बिल्कुल
1: बैठ रही है।
0: सटीक बैठे सर।
1: बिल्कुल।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर सुगणगौर, और आज आप रहे सागर विशेष मेहमान हैं नीतू टाक जी, जिका पॉलिटेक्निक कॉलेज विभाग हूँ आया है, और बहुत सारी चीज़ें जिकी है फैशन डिजाइनिंग री और भी कई आर्ट रे बारे में अपन जिकी है जानकारी दे रही है।
1: बिल्कुल नीतू जी, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग कार्यक्रम गणगौर रे मायने। तो उम्र रो
0: धन्यवाद
1: कोई भी
0: सर।
1: पड़ाव सीखने और आगे बढ़ने रो रास्ते को नहीं रोक सके, और आज डिजिटल युग में ऑनलाइन कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्क फ्रॉम होम रा अवसर इन वापसी में और भी आसान बन गया है। तो अबे आप वही पूछने चाहवा कि जितना भी सुनने वाला श्रोतागण है, व्याण आप और बताओ कि आपके संस्थान में कौन कौन सा डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध है और हर कोर्स री आपकी कई खासियत है।
2: हाँ पूनम जी, थैंक यू। मैं यूँ कहना चाहूँ सा कि अटे आ डिजाइनिंग री कॉलेज है और चार तरह का डिप्लोमा चल रहा है, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, कॉमर्शियल आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइन, इंटीरियर डेकोरेशन। सबसे जरूरी बात आ है अटे कि अटे 10वीं पास बच्चियाँ एडमिशन ले सके, क्योंकि 10वीं रे पच्चे हर घर में एक ही प्रश्न होवे, अब क्या करें। क्योंकि जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट आता है बच्चों के एकदम से वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है। अच्छा, नंबर कम आए, नंबर ज़्यादा आए, उस तरह की जो एक पैनिक वाला स्टेज कभी कभी बच्चियां फेस करती है उसको नहीं करें, और 10वीं के बाद में ये महिला पॉलिटेक्निक जोधपुर में एडमिशन ले सकती हैं। और जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अब आप में आपने कही कि वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, जिको आम भाषा में फैशन डिजाइनिंग कहवे है नी, तो जिन्हों जिनमें इंटरेस्ट है उनमें वे बच्चियां आप रो एडमिशन ले सके। सिर्फ 10वीं पास चाहिए, एज लिमिट नहीं है, बच्चियां कई महिलाएं भी आ सके।
1: अच्छा,
2: जो फ्री होएगी, अबे घरे काम हो, अबे जाने के बच्चा स्कूल जावे, मैं फ्री बैठी रहे, कई करा, 10 5 आओ आप कॉलेज में, आराम काम करो। और किन्हीं भी डिपार्टमेंट में आप एडमिश्न लोला, मैं 100% श्योरिटी हूँ, कहूँ कि आप रहे हाथ में 3 साल होता होता एड़ो हुनर आ जावे कि आप अपने आप पया कमाऊन लाग जाओ, अपने
1: अच्छा
2: आप पगा माथे खड़ा हो जाओ आप रहे।
1: तो इसमें परसेंटेज कोई मायने कौन रखे?
2: नहीं, यूं कट ऑफ है साहब, परसेंटेज रहा, पर फिर भी 45% के अबव वाले सब बच्चों को मिल जाता है एडमिशन।
0: तो इसमें कौन कौन सा जिका कोर्स है वह भी बताओ आप।
2: सबू पहली कॉमर्शियल आर्ट की बात कर रहा आपा, कॉमर्शियल आर्ट वर्ड थोड़ो घणो अपने समझ में आवे कि विज्ञापन कला, कैलीग्राफी, फोटोग्राफी, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया डिजाइनर्स, ये जो आजकल जो ट्रेंड में चल रही है चीजें, ये सारी चीजें कॉमर्शियल आर्ट में सिखाई जाती है। फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग जो डिपार्टमेंट है, जिन्हें आम भाषा में आपा फैशन डिजाइनिंग का, आजकल आपा सब खुद एक अपना खुदरा डिजाइनर रहा, क्योंकि हर चीज आपा अपने टेस्ट को खरीदा पहना, तो उन्हें और अच्छी डिटेल में समझावनो है नी, कि कर आप रो बुटीक खोल सको, फैशन कोऑर्डिनेटर बन सको, फैशन स्टाइलिस्ट, फैशन मर्केंडाइजर, एक्सपोर्ट हाउसेस में काम कर सको, जॉब्स ले सको आप।
0: बिल्कुल जी हाँ, अभी आप इतना कोर्स के बारे में बता रहे हो, तो जी इंटीरियर डेकोरेशन भी एक कोर्स हुआ करा है।
2: हाँ
0: तो
2: बिल्कुल
0: जब
2: सर।
0: अपन इंटीरियर डेकोरेशन की बात करा तो हमेशा अपन यहाँ लगे कि शायद घर ने सजाने की बात चल रही है, तो इरे अंदर और भी कौन कौन सी संभावनाएं हैं
2: नहीं,
0: करियर
2: घर
0: में वह
2: ने
0: भी
2: तो
0: बताओ।
2: सजावनो ही, ऐसा इंटीरियर और एक्सटीरियर दोया ने सजावनी बात है। इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत डिटेलिंग में समझायो जावे फर्नीचर डिजाइन्स रे बारे में, इंटीरियर लैंडस्केपिंग रे बारे में, जो मेन कंप्यूटर रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, रेविट है, ऑटोकैड है, 3D Max है, यानी सब रे बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई कराई जावे। मतलब छोटे तौर में आर्किटेक्ट्स जिको सब चीजें करे नी, वे इंटीरियर डिजाइनर बच्चा सब कुछ कर सके।

0: तो बात करें टेक्सटाइल डिजाइनरी, तो भारतीय हस्तशिल्प और फैशन उद्योग में इनरो का ही महत्व है और इनरो और इन क्षेत्र में युवा आप भविष्य किन तरीका संवार सके।
1: टेक्सटाइल डिजाइन में तो टेक्सटाइल डाइंग प्रिंटिंग जो अपने परंपरागत भारतीय टेक्सटाइल डिजाइन के बारे में ज्ञान है, हैंडलूम पावर लूम कई हुए, वीविंग कई हुए, तरह तरह रहा। आज देखो आज की तारीख में हजारों तरह का कपड़ा बाजार में है मटेरियल, तो वे सब कौन देवे अपने टेक्सटाइल डिजाइनर्स देवे। वन टेक्सटाइल डिजाइनर्स री मेहनत है उन लारे हल्को सो चेंज करने हैं बाजार में। 50 रुपये मीटर भी कपड़ो है, 5,000 रुपये मीटर भी कपड़ो है, तो सब कौन कर रही है टेक्सटाइल डिजाइनर्स कर रही है।

0: आप सुन रहे हो आकाशवाणी जोधपुर से कार्यक्रम गण को, और आप आज बात करें हाँ नीतू जी से। तो नीतू जी, आप श्रोता ने बताओ कि कॉलेज में जब हम प्रवेश लेनो वे तो विण समय कौन कौन सी प्रक्रिया जी की वह होया करे।
1: कॉलेज में प्रवेश लेने की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। अखबार में आ जाया करे एडवर्टाइजमेंट, अखबार उठे प्रवेश चालू है। तो जो भी बच्चियां अगर इच्छुक है, जो सुन रही है श्रोतावां वाणी मम्मियां या भाई बहन जो भी, तो 27 तारीख ने कॉलेज परिसर आवा। अपन नगर निगम है, उनने कन्ने ही महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है। आप डॉक्यूमेंट्स लेने आओ, पधारो आप और डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाए। 6 तारीख पर चाहे आपने उठे एडमिशन मिल जाए। पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है अभी। तो आप जो भी आना चाहें, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए। कुछ भी नहीं, 10th की मार्कशीट है और जिस स्कूल से आप पढ़ के आए हो मार्कशीट लेके आओगे आप। और बाय चांस अगर आपका कुछ गैप है तो गैप सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो बाद की बात है ना। एक बार आप अपना डॉक्यूमेंट लेके पहुंचो।
0: मतलब हर डिपार्टमेंट वास्ते एक निश्चित सीट है, वह
1: हाँ
0: सीट फुल
1: बिल्कुल,
0: होया बाद
1: हाँ
0: में
1: हाँ
0: एडमिशन क्लोज
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: बिल्कुल। 30-30 सीट सीटें हैं, पर अभी तक तो है सीट, तो ऐसा नहीं है बच्चा ने नहीं मिलेला, बच्चियां उठे प्रवेश पा सके।
0: तो
1: और
0: जिका आर्थिक रूप से कमजोर है जिका बच्चा, तो ब्यारे वास्ते भी आप जी की संस्था है कोई प्रकार सहयोग करे।
1: कहें कि सबसे बड़ी सहायता तो बच्चियों को ये है कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर ही बहुत कम है। दूसरी डिजाइनिंग कॉलेज में लाख लाख रुपया एक साल रहा, माने तो मात्र 8-8.5 हजार रुपया पूरे साल रहा। 6 महीने रहा तो आप आधा कर लो। अच्छा, उन पचे ट्यूशन फी एग्जेम्प्टेड है गर्ल्स की, बाकी सब सुविधा वहाँ उठे है, मशीना है। आपने अगर आप चाहो तो टीचर्स हैं सारे टाइम आप हेल्प करने के लिए। तो फीस तो बहुत ही कम है दूसरी डिजाइनिंग वाले कॉलेजेस से। हॉस्टल की फैसिलिटी है वहाँ पे, तो जो बच्चियां आगती पागती वाली सुन रही है, जो आने रोज आओ जाओ नहीं करनी चाहे, सा उठे रहने पढ़नी चाहे, तो हॉस्टल फैसिलिटी है, वार्डन है, सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे। स्कॉलरशिप्स, अगिनत स्कॉलरशिप्स देती है कॉलेज हमारी, है ना। माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप्स है, अपने PWD के लिए स्कॉलरशिप्स है, अपने विडोज के लिए है ना। तो बहुत तरह की स्कॉलरशिप्स है, आके बात करेंगे वहां पे तो
0: और
1: जान
0: ज्यादा
1: पड़ेला।
0: जानकारी
1: बिल्कुल
0: मिलेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो नीतू जी, आज इस समय मैंने लड़कियां रे वास्ते करियर चुनता टाइम सबसे महत्वपूर्ण जी की बात है वह कई होनी चाहिए। और कई बच्चे अपनी रुचि और परिवार की अपेक्षा बीच उलझ जाया करे कि अबे कौन सा निर्णय वेणे लेना चाहिए। तो थोड़ा सो वेणे सही राह माते आप कोई सुझाव दो।
1: मैं तो एक चीज कहूंगा सा कि घर परिवार ने साथे लेने चालनो ही, एक अच्छी महिला रो एक अच्छी बच्ची रो गुण होनो चाहिए। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपरी बात रखनो तरीको आवनो चाहिए, आपने समझावनो आवनो चाहिए कि मने इन फील्ड में करनो है तो क्यों करनो है। आपरी बात जस्टिफाई करो और आपने जिन चीज में रुचि है उन्हीं चीज में आप आगे बढ़ो, है ना। उन्हीं चीज में आप आगे बढ़ोला तो आप 100% आप रो डिवोशन देवोला और सक्सेसफुल होवोला ही होवोला।
0: बिल्कुल, मतलब परिवार ने भी ध्यान रखना
1: बिल्कुल
0: चाहिए कि
1: परिवार
0: बच्ची
1: में
0: तो
1: बिल्कुल ध्यान रखना, आपने चलना है, आपने विपरीत नहीं जावनो है, मैंने क्योंकि परिवार आप बुरो कदे भी नहीं चाहे।
0: तो बिल्कुल नीतू जी, सपना री कोई एक्सपायरी डेट को नहीं होया करे। अगर आपने अंदर कुछ और कर गुजरने री चाहत है, आज भी जिंदा है, तो आप री झिझक ने लारे छोड़ना आप आगे बढ़ सको। तो बहुत सी ऐसी महिलाओं हैं जिनकी शादी या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आप करियर बीच रे मायने छोड़ दियो, तो कहीं वे दोबारा शुरुआत कर सके हैं। इनके वास्ते आप उन्होंने कई सलाह देनी चाहोला।
1: बिल्कुल, आज री बच्ची अगर इन तरह री तकलीफ ने देख रही है तो सशक्त

0: बने खुद आर्थिक आत्मनिर्भरता की तरफ जावे, स्वरोजगार की दिशा में जावे और खुद रो भविष्य उज्जवल बनावे।
1: तो नीतू जी देखो आपने एक लंबो समय हो गयो काम करते हुए कॉलेज रमाए, तो जब आप काम कर रहे हो अभी भी आप काम कर ही रहे हो, तो कोई ऐसा किस्सो या कोई ऐसा छात्र जिसके से आपने बहुत कुछ सीखने मिलो कि हाँ आपने यहाँ लागे कि हाँ वो बच्चों जो है ये कॉलेज निकल आज इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं।
0: नहीं बच्चियां तो बहुत होती है आराधना जी जो कि इस तरह से हमको ही एक लेसन टीच करके जाती है, पर एक बच्ची थी 5-7 साल पहले रेखा जो कि बहुत ही संघर्षों से हमारे पास कॉलेज में आई। वो सेपरेटेड थी, अकेली रहती, वह अपने बच्चा रहते, पर वह इतनी टाइमली पंक्चुअल ही इतनो काम व समय माते करने देती और इतनी स्ट्रगल रे बच्चे वह जब प्रथम आई पूरी कॉलेज में, तो हमारे वास्ते एक बहुत हर्ष विषय हो गयो कि आ बच्ची कटे सुकटे पहुंच गई है। आज भी वह बच्ची इतो रिगार्ड रखे, आवे पगारे हाथ लगावे कि मैडम आप रे कारण इन कॉलेज रे कारण आज मैं मेरे बच्चा रे पालन पोषण आराम कर सक रही हूँ।
1: तो जी हाँ अठो बच्चा जिका बहुत कुछ सीखा कोर्स सीखे तो घरे बैठे भी इन चीजों का लाभ उठा
0: बिल्कुल बिल्कुल उठा सके सा। आप रे हाथ रो हुनर कटे ही नहीं जावे, आप घरे सिंपल छोटो सो कशी दो काटो, आप एक मोटिव निकालो तो आपने 50 रुपया देवे इजीली दुकान,
1: क्योंकि हर कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप 12,000 कोई काम कर सके।
0: एक मशीन सिंपल मशीन लेके आप वो काम शुरू कर सको, आप कशी देर फील्ड में कर सको। आजकल ये क्रोशिया क्रोचेट मैक्रे इतनी सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि बच्चियां आराम घरे बैठने, और आजकल जिको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलियो सेल वास्ते बच्चा ने तो आराम कमा सके, कटे भी जाओ नहीं जरूरत नहीं है, आपने कोई भी जगह ले उन्हें जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
1: कह सका कि सोशल मीडिया द्वारा भी बच्चा जिका है आगे बढ़ सके।
0: आगे बढ़े मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दो ही हो वैसे,
1: हाँ लेकिन आप ज्यादा ध्यान पॉजिटिव
0: पॉजिटिव
1: तो सब चीज पॉजिटिव।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो बिल्कुल नीतू जी, अंत में उन बेटे और महिलाओं ने आप कई कहनी चाहोला जो आपने सपना ने पूरा करनी चाहे पर हाल भी पहलो कदम उठाने से हिचकिचा रही है?
0: मैं तो एक चीज कहूंगा, डिग्री नहीं करियर बनाओ। अपना करियर बनाना है आपको, अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, इंटर्नशिप्स करो, इंटर्नशिप करने के बाद जॉब मिलेगी और महिला पॉलिटेक्निक जोधपुर के द्वार आपके लिए सभी के लिए खुले हैं, तो जो भी यहाँ पे आना चाहें पधारें और अपने सपनों को उड़ान लगाएं।
1: तो जब आप सपना री उड़ान री बात करियो तो जिका नंबर है संपर्क नंबर, बच्चा अगर कोई संपर्क करना चाहे तो वह नंबर जिका है वह भी बता दो जठा बच्चा सब कुछ जिकी जानकारी ले सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लो, श्रीमती रेणु व्यास है 9462053195। एडमिशन प्रभारी है, मैं रिपीट
1: एक बार फिर से आप बता दो
0: 9262053195। आप यानो संपर्क करें और आपने जो भी जरूरी जानकारी हुई वह मिल जाए और आप सभी रोटे कॉलेज में महाविद्यालय में माने स्वागत है। धन्यवाद सर।
2: बिल्कुल आज री इन भेट वार्ता सो साफ हो गया कि जब एक महिला शिक्षा और तकनीक रा पंख लगावे है तो पूरो समाज उड़ान भरिया करे, और एक सुंदर पंक्ति रे साथ है हुनर ही सच्ची ताकत है। इन भेट वार्ता ने अठे विराम देवा। आज रे विशेष गणगौर करियर री नई उड़ान में अपने सागे आज श्रीमती नीतू टाक वरिष्ठ फैकल्टी कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग विभाग राजकीय आवासीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर राजस्थान सु। तो नीतू जी आपसे बातचीत करने आज सगला जिका भी युवा है आपने सुनियो है विशेषकर छात्रा मां वेणी एक नई दिशा मिली हुई जो इन क्षेत्र में मैंने आप करियर बनानी चाहे, तो आज आप बहुमूल्य समय निकालने आप जोधपुर आकाशवाणी रे स्टूडियो रे कार्यक्रम गणगौर में शामिल होया इंद्र वास्ते आप हार्दिक आभार और धन्यवाद है।
0: आकाशवाणी टीम आज मैंने अटे बुलायो और मारे हाथे जिको भी संवाद हो उन वास्ते वन सभी रो सगला रो तह दिलू धन्यवाद।

0: तो आराधना जी,
1: हम्म,
0: एक प्रसिद्ध लेखिका का विचार है कि स्वयं सफल होने की शुरुआत हमेशा खुद को चुनने से ही होती है। यानी अगर आपने सफल होना है तो उनकी शुरुआत है जिसको आपने अपने आप से ही करनी हो वेला।
1: बिल्कुल। देखो, कई बार अपन ने हारो भी सामना करना पड़े, पर पराजित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब पराजित हुआ ला तो ही आप जीतो ला। ए माया एंजेला है, 12 ए विचार है।
0: और मिशेल ओबेमा है व्यण विचार इन तरीकों है कि एक महिला के रूप में अपा कई हासिल कर सका, इनकी कोई सीमा नहीं है।
1: बिल्कुल। और देखो, महिला में सबसे अगर आकर्षक की कोई चीज़ है तो वह है बिरो आत्मविश्वास। ए सुंदर विचार जिका है, ए बयान सेरा। और कोई भी समाज जी को है वो जद ही उन्नति करे, जटे स्त्रियां जी की है उन्नति करे करे पूनम जी। और एक बहुत सुंदर विचार है केरोलिना हरेरा कि मतलब मने कोई भी किताब या चित्र सु प्रेरणा तो मने मिली है, लेकिन उन्होंने भी ज़्यादा मने प्रेरणा मिले है उन महिला सो जिका सो मैं अक्सर मिलया करूँ। क्योंकि पूनम जी, हर एक महिला जी की है वह अपने आप में प्रतिभावान है। हर एक व्यक्ति महिला के अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण जरूर छुपोड़ा है जिका सो आपा भी जद मिला तो भी आपा कोई ना कोई चीज़ है जिका सीखा। धरती पर आप यह नहीं कह सका कि कोई व्यक्ति जी को है बिना सब कुछ आवे, और कोई व्यक्ति जी को है जिकन कुछ नहीं आवे।
0: बिल्कुल
1: भगवान जो कह मैंने जिकन भेजे है धरती पर, तो कोई ना कोई गुण जी को है वो जरूर जरूर देने भेजे है।
0: बिल्कुल, जब भी अपन खुद पर विश्वास करा तो आधी जीत तो अपनी वटी हो जाया करे। और
1: बिल्कुल।
0: अपने खुद री तुलना किन सु भी नहीं करनी चाहिए। जड़ा
1: हाँ
0: अपा हाँ वेड़ा ही सर्वश्रेष्ठ हाँ, और हमेशा सिर उठान जीना सीखना चाहिए। और आपकी जो भी क्षमता है वे असीमित है, तो आपने उन्हें पहचानना चाहिए। और अपने एक कहावत भी है कि जादूगर जाने जादूरी बात, हुनरमंद जाने हुनरी बात। जो जिन कला या हुनर मायने माहिर होवे वही उनकी गहराई और बारीकियां ने समझ सके।
1: बिल्कुल। एक देखो, जब आप बात बोले तो एक सुंदर विचार और है फ्लोरेंस नाइटेंगल रो कि मतलब कोई भी जगह सफलता है बिरु श्रेय जी को है, वो इन बात पर है कि आप कहीं सीखे हो, न कि कोई बहानो बनाए। अगर कोई व्यक्ति है जिकने काम नहीं आ रही है तो भी ने सीखना चाहिए, न कि आप कोई बहानो बनाओ। और बहुत बार यह भी है कि कोई बहानो बना दे तो भी बहाने ना अपने सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपन ध्यान है कि वो व्यक्ति इस केवल बहानो बना रहे है। तो पूनम जी, देखो आज रोज को आप विशेष प्रस्तुति दी कार्यक्रम में, तो ये उद्देश्य अपना हुई हो कि अपनी बेटियाँ अपनी सखियाँ जी की है आपरे हुनर ने पहचाने, कौशल पर आधारित शिक्षा से जुड़े, और सागे सागे आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़, आत्मविश्वास रे सागे आगे बढ़े और सही मार्गदर्शन मिले। तो इन वास्ते वे कोई सुम परामर्श है जिसको भी ले सके, और हमेशा आपरे सपना ने उड़ान देने वास्ते मतलब सतत यात्रा जिकी है वह चलती रहनी चाहिए, बिना रोकनी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है कि आज रोज को कार्यक्रम है वो अनेक अपने जो का युवा मतलब छोरियां हैं अपने बेटियां हैं वाने कुछ न कुछ सीखने मिले सी, आना अपने जो का माता पिता है अपने बहन बेटा वाने भी ये उपयोगी जिकी आप बातचीत करी वहां से कुछ न कुछ सीखने जरूर जरूर मिले वाला। तो आज इन कार्यक्रम में आप सके ये दो सखियाँ आराधना जोशी और पूनम देवड़ा, और आज इन ज्ञानवर्धक रोचक कार्यक्रम री प्रस्तुति एवं संयोजन हो श्री राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गणगौर, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं दोपहर समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विम्बलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र

0: राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन,

0: में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए।

0: हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जगन्नाथ तकानेन।
2: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
2: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
2: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलिजा

0: आंद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में कैरोलिना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मैक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
3: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
3: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न

0: था डायमंड सीड किसे कहते हैं?
1: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है?
1: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559 और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण, श्रोता संवाद। विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
2: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
2: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों

0: एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार के नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि

0: देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर
1: जी
0: ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो
1: जी
0: बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे
1: अच्छे
0: बहुत अच्छे
1: खिलाड़ी हैं।
0: रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और
1: बिल्कुल
0: वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं है, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए।
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक
1: जी
0: कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या
1: जी
0: रहेगी।
1: हाँ जी
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी जी
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
1: जी
0: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से, कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम
1: बिल्कुल
0: बोलते हैं,
1: जी हाँ
0: कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता
1: जी
0: करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इसके अलावा विद्यार्थी में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो
1: क्योंकि
0: इससे भी
1: अक्सर
0: अच्छा कर
1: होता नहीं है।
0: सकते
1: जी
0: हो।
1: हाँ
0: तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी, एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है
1: हाँ
0: और
1: मनोबल
0: वो
1: बढ़ता है।
0: मनोबल बढ़ता
1: जी
0: है,
1: जी
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए
1: जी
0: कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए,
1: जी
0: समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य में एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे।
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते,

0: सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली।
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर
1: जी
0: आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू व्हेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं,
1: जी
0: उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों
1: अकेलापन
0: से
1: भी आ जाता।
0: अकेलापन आ जाएगा,
1: जी
0: अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं,
1: ऐसा
0: जबकि
1: होता
0: वो
1: है।
0: बैठे एक ही घर में हैं,
1: जी हाँ
0: तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए।
1: जी
0: और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं,
1: जी
0: रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए,
1: बिल्कुल
0: अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे,
1: साथ
0: अपने
1: में खाना
0: विषयों की
1: चाहिए।
0: चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए।
1: जी
0: इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार,
1: जी
0: सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: जी
0: कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी,
1: बिल्कुल।
0: और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है,
1: जी
0: हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं।
1: जी
0: तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है
0: वही
1: बिल्कुल।
0: पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
1: बिल्कुल जी
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है,
1: जी
0: उस टैलेंट को हमें पकड़ना है, और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
1: जी उसी को
0: इसके अलावा
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं।
1: जी
0: जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ होती है,
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया।
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
1: जी
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती

0: हाँ होता है।
1: तो इसका मतलब क्या हुआ
0: जी,
1: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
0: जी।
1: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
0: थोप
1: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
0: हाँ, प्रोत्साहित करें,
1: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
0: जी।
1: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
0: ये
1: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
0: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
1: देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
0: जी,
1: 8448440632 8448440632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
0: जी।
1: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
0: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: बनाएं खुशियाँ, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दिन के 3 बज रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, हमारी दूसरी सभा अब प्रारंभ होती है, जिसकी शुरुआत करते हैं युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी से।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। और जी, क्या है आपके हाल चाल? और भैया जी, हाल चाल एकदम बढ़िया होने वाले हैं, क्योंकि जोधपुर की जो गर्मी है उसे टाटा बाय बाय कहकर मानसून जो है आ चुका है आज पूरे दिन। क्या कमाल का मौसम था! सुबह उठा 12 बजे तक भी ऐसा समय था ना कि ऐसा लग रहा था मानो सुबह के 5 बज रहे, क्योंकि जो लोग बाहर घूमने गए हैं ना वो वापस जोधपुर आकर सोच रहे हैं भैया अभी तक ऐसा लग रहा है कि बाहर ही है। फिलहाल बातें ये वाली बहुत सारी आपसे करने वाले हैं। अभी 5 बज चुके हैं और ये समय हो चला है युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी का। 531 KHz और FM 102.1 पर आप सुन रहे हैं इसे। और आज आपके साथ दो प्यारी सी आवाज़, मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो राहगीर रोहित, और आज मेरे साथ है
1: जी हाँ, बिल्कुल। इस आवाज़ का नाम राहुल। और मतलब इससे ज़्यादा आपने क्या ही किस्मत पाई है कि सुबह की
0: यस
1: चाय आपने बरसात को देखते हुए निहारते हुए पी, और शाम की चाय भी आप उसी बारिश को निहारते हुए पी रहे हो, तो और
0: बिल्कुल
1: क्या ही चाहिए जीवन में।
0: बिल्कुल। और इसी के साथ साथ आज मंडे भी आ गया, यानी कि मंडे को वो वाला दिन है जब श्रोताओं अपनी फरमाइश भेजते हैं और अपना पसंदीदा ट्रैक भी, अपना पसंदीदा गीत भी जो है वो सुनते हैं, यानी डबल धमाल हो चुका है
1: तो
0: भैया।
1: बिल्कुल जी, फरमाइशों को बिटारा जो हमारे सामने कुछ ही देर में खुलने वाला है, उससे
0: यस
1: पहले खोल देते हैं आज की प्लेलिस्ट की खोज में आपके लिए चुना गया ये पहला गाना। उसके बाद फरमाइशों का पिटारा तो खुलने वाला है। चलिए जी, बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे आज की शाम का ये पहला मजेदार सा गाना।

0: बिल्कुल जी, कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हो पसंद कार्यक्रम युवाणी, और आज है मंडे स्पेशल। और मंडे के दिन, जैसा कि आपको बताया था, कि आज आप हमें फरमाइश भेज सकते हैं और वही गीत हम आपको सुनाएंगे जो आप हमें फरमाइश में भेजेंगे। बिल्कुल जी, आप हमें दो जगह पर जो है अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। खुशी का माहौल एकदम बढ़िया हुई है, क्योंकि बारिश जो है वो बहुत अच्छी आ रही है, मानसून बहुत अच्छा है, गर्मी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। अगर आपको भी हमें फरमाइश भेजना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9 4 1 3 3 2 9 3 5 9। एक बार फिर से बताई दे रहे हैं भैया, हमारे नंबर है 9 4 1 3 3 2 9 3 5 9।
1: और हमारे जो ईमेल आईडी है जिस पर आप जो हमें मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी है yuvapasandjodhpur@gmail.com। यहाँ पर भी आप अपनी जो है मनपसंद फरमाइश, उसका गाना, फिल्म का नाम और गीत का नाम लिखकर साथ अपना नाम जोड़कर हमें भेज
0: क्या
1: सकते हैं
0: बात
1: इस
0: है,
1: मेल आईडी पर। और हमारे आज के जो पहले फरमाइश करता है उनका जो है वो फरमाइश का बटारा खुल चुका है। वो है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाँ, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से इन्होंने अपनी फरमाइश भेजी है। और साथ ही साथ गांव फ्रांसी हिसार से अगली फरमाइश है इन्होंने भेजी है। इनका नाम है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके पूरे परिवार वालों ने।
0: बिल्कुल। उन्हीं के साथ साथ जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से जो है उन्होंने फरमाइश करी, जिनके नाम है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से। इस वक्त प्रोग्राम यूनिवर्सिटी को एंजॉय कर रहे हैं आप इन दो मज़ेदार सी आवाज़ के साथ। इस आवाज़ का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो राहगीर रोहित।
0: अगली फरमाइश आ चुकी है, फरमाइशों का पिटारा खुल चुका है। अगली फरमाइश रोहित भैया बिल्कुल बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: भैया जी, देखिए अगली जो फरमाइश है वो आई है गांव फ्रांस हिसार से, जो कि करी है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने।
0: और इसके साथ साथ अगली फरमाइश आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल डॉक्टर अमनदीप, और वहीं साथ साथ दतरंगी भाटापार छत्तीसगढ़ से हमारे फरमाइशकर्ता हैं, जो कि हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा की तरफ से।
1: बिल्कुल, और इनके साथ साथ भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार ने भी इसी गीत के लिए फरमाइश की। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये वाला म्यूजिकल गीत।

0: वेलकम बैक जी एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं आप। और सोमवार का दिन है, युवाणी युवा पसंद फरमाइश कार्यक्रम चल रहा है। फरमाइशों का बिटारा खुल चुका है, अगली फरमाइश भी आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की तरफ से।
1: बिल्कुल। और इन्हीं के साथ साथ खांडा फलसा मियाँ चौक जोधपुर से अब्दुल हमीद चीपा, रेखा बानो चीपा, अब्दुल मुसव्वीर, आयशा बानो, अब्दुल अहमद और अब्दुल अहद, फिजा बानो चीपा ने भी इसी गीत की फरमाइश की है।
0: साथ ही साथ पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से जो कि फरमाइश आई है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ
1: बिल्कुल।
0: से।
1: और इन्हीं के साथ साथ आयशा, फहीमा, अफसाना, मिसबा, शायरा, साबिर साहब, मोहम्मद असरलान, अब्दुल अहद, असमा और साहिल ने भी खांडा फलसा जोधपुर से इस गीत के लिए फरमाइश की है। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

0: तो किसी के लिए अपने की याद, भीगी हुई सड़कें, मिट्टी की खुशबू और दिल में उठती अनकही बात। शायद यही वजह है कि मानसून को मोहब्बत का मौसम भी कहा जाता है। और अब इस खूबसूरत शाम और बारिश की इन फुहारों के बीच पेश एक छोटा सा ख्याल। धूप में तपूं, आग में तपूं, बात तो एक ही है। चांद तकूं या तेरा चेहरा तकूं, बात तो एक ही है। तेरी झिलमिलाती तस्वीर आ जाती है ख्वाबों में। लाइट बंद रखूं या पलके मूंद लूं, बात एक ही है। तेरी ही खुशबू फैली है चारों ओर मेरे। गुलाब सूंघूं या तुझे सूंघूं, बात तो एक ही है। बारिश आती है सूखी जमीन की यादों में। अब बादल रोए या मैं रोऊं, बात तो एक ही है। कमबख्त हर रास्ता तेरी गली को ले जाता है। इधर चलूं या उधर चलूं, बात तो एक ही है। ढेरों बातें, ढेरों मुलाकातें, फिर मुलाकातों की बातें। आईने को सुनाऊं या खुद सुनाऊं, बात तो एक ही है। मेरे हालात समझ बयां कैसे करूं, रो पड़ूं या आह भरूं, बात तो एक ही है। तेरी आवाज अब भी गूंजती है मेरे खामोशियों में। कोई गीत सुनूं या सन्नाटा सुनूं, बात तो एक ही है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि बारिश जो है किसी ना किसी की याद लेकर आती है, या बारिश जो है हमेशा एक मोहब्बत का मौसम रहा है और प्रेम का मौसम रहा है। तो अगर आप भी किसी को डेडिकेट करना चाहते, कोई ऐसा गीत जो आप उनको सुनाना चाहते हैं, तो भैया यही वो चांस है, यही वो समय है, आप उन्हें डेडिकेट भी कर सकते हैं।
1: कहाँ डेडिकेट कर सकते हैं, कहाँ सुना सकते हैं, कहाँ हमें बता सकते हैं? हमारा मेल एड्रेस है yuvapasandjodhpur@gmail.com। जी हाँ, yuvapasandjodhpur@gmail.com। इस मेल आईडी पर जाकर आप अपना कोई भी मन पसंदीदा गाना, फिल्म का नाम और अपना नाम, या फिर जिसे डेडिकेट करना चाहते हैं उसका नाम भी लिखकर भेज सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413329359। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा नंबर है 9413329359।
1: इसी कड़ी में अगली जो फरमाइश करता है उनका भी नाम हमारे सामने है, जो कि हैं बागपत उत्तर प्रदेश से हैं, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ से। तो अगर आप भी अपनी फरमाइश का कोई भी गीत सुनना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं।

बिल्कुल, देखिए बारिश का मौसम है और ये मौसम है ना, सिर्फ मौसम नहीं, एक एहसास है। किसी के लिए गरम गरम चाय की पहली चुस्की,

0: वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से इस मज़ेदार सी शाम में। प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, युवा पसंद फरमाइश कार्यक्रम, और लगातार फरमाइशों का पिटारा चलता जा रहा है कि फरमाइश हमें भेजते चले जा रहे हैं। और अगली फरमाइश आई है कबीर रेडियो श्रोता संग डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से है, जो कि है देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी, पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया,
1: बिल्कुल,
0: साथ ही
1: और
0: साथ इनके पूरे परिवार वालों की तरफ से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इन्हीं के साथ साथ गोपालगढ़ से राजेश, आरती, विजय, श्रीराम, जानी, दिनेश चौहान और रामदेवरा से इनकी फरमाइश ये आई है।
0: साथ ही साथ मेरठ कैंट से है दिग्दर्शन और कविता गौड़।
1: बिल्कुल, और इन्हीं के साथ साथ मोहम्मद हारून सेठ, मोहम्मद सलीम मंत्री, मोहम्मद यासिफ पेरू, मोहम्मद यासीन राजू, मोहम्मद साबिर अपुड़ी, और इन्होंने पूरी जो है खांडा फलसा की तरफ से, इनके पूरी परिवार की तरफ से इन्होंने इस गीत के लिए फरमाइश की है।
0: गांव शोभापुर मेरठ से हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़ इनकी। चलिए आप और हम मिलके सुनते हैं फरमाइश का ये मजेदार सा गीत।
1: बिल्कुल।

0: हाँ जी, कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। एकदम प्यारा सा मौसम हो रखा है। देखिए, मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है जोधपुर में, और इतना प्यारा आज पूरे दिन मौसम रहा है, और आज की जो रात है ना वो बहुत ठंडी होने वाली है, और इसी के साथ साथ जो शाम है वो ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट है राहुल। और इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, इतने प्यारी प्यारी सी जो है फरमाइशें हमारे पास आ रही है, इतने प्यारे प्यारे गीत हम लोग सुन रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ फिर से जो है फरमाइशों का सिलसिला जारी है। फिर और फरमाइश हमारे साथ आई है, और देखते हैं ये जो सीधी फरमाइश आई है, ये आई है गाँव लूणी जंक्शन ज़िला जोधपुर से, जो कि करी है अजीज टेलर, शबाना बानो, रुखसार बानो, काजोल बानो, आदित्य खान की तरफ से।
1: और वहीं साथ ही साथ अगली फरमाइश जो आई है वो आई है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से ये फरमाइश आई है।
0: बिल्कुल, और फलौदी गांव से युवानी की पूरी टीम को नमस्कार करते हुए, नमस्कार जी। भीख सिंह राठौर, विजेंद्र राठौर, मोनिका, रक्षा, जस्सू कंवर और सोलंकी, जस्सू कंवर सोलंकी ने जो है इस गीत की फरमाइश की है।
1: साथ ही साथ पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से अगली फरमाइश करता है हमारे राजेश साबले और राजदीप, वहीं

0: राशि, साथ ही श्रीमती शीतल और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ
1: बिल्कुल।
0: से।
1: और गांव मेलाना, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर से छलाराम मेघवाल, रविंद्र देवेंद्र, अनीता और फूली देवी मेघवाल ने भी इसी गीत के लिए फरमाइश की। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये वाला अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: वेलकम बैक इज आपका एक बार फिर से प्रोग्राम यूवाणी को एंजॉय कर रहे हो आप। और अगर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, फोर व्हीलर में कहीं भी सफ़र कर रहे हो, तो आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। बरसात का मौसम तेज़ है और कुछ ठंडी हवा लगने का भी चांस रहेगा। मज़े तो बराबर है, लेकिन ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब कभी भी बाइक ट्रैवल करो तो आप जो है हेलमेट का इस्तेमाल करना ना भूलेगा। फिलहाल प्रोग्राम यूवाणी में युवा पसंद फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है और अगली फरमाइश का पिटारा खुल चुका है, जो कि है गाँव नथाना पंजाब से है हरजिंदर छिंदा, जसवीर और सीता और गीता की तरफ से।
1: बिल्कुल। और इन्हीं के साथ साथ जोधपुर से राजेश, देवराया, गीता, बरबड़, जेठाराम, धादू और इनकी पूरी परिवार की तरफ से इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है।
0: साथ ही साथ दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, जो कि हमारी अगले फरमाइश करता है, वो हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत की तरफ से। आप और मिलकर

0: बिल्कुल जी, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत। आप सुन रहे हो पसंद कार्यक्रम युवाणी, और देखिए जी, फरमाइशों का सिलसिला अभी भी चल रहा है। अगली जो फरमाइश है वो आई है प्रताप नगर जोधपुर से, जो कि करी है मोहम्मद यासीन चीपा, समीना चीपा, गुलाम रसूल, शाहिन मंगल, अब्बास फातिमा ने।
1: और अगले फरमाइशकर्ता सबसे पहले तो लिखते हैं कि आपको प्यार भरा नमस्कार। जी बिल्कुल,
0: नमस्कार।
1: आपको भी नमस्कार। और फरमाइशकर्ता जो कि हैं सदर बाज़ार कुरावली से, अनिल वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा की तरफ से। आप और मिलकर एंजॉय करेंगे इनकी फरमाइश का, और साथ साथ

अगली जो फरमाइश करता है वो है, हमें लिखते हैं कि आपको और हमको सबको प्यार भरा नमस्कार, आदाब बिल्कुल, और जो कि है गांव कुम्हार हेड़ा से, सहारनपुर से हैं ये, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया और इब्राहिम की तरफ से।

0: तक धुम धुम तक धुम धुम तक
1: बिल्कुल
0: धुम,
1: जी,
0: क्या बात है। बेहतरीन
1: ऐसे
0: सब्जी का ट्रैक आपने एंजॉय किया आज की शाम। प्रोग्राम युवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप, और अगले फरमाइश करता हमारे अब हमारे साथ हैं, जो कि जिनका नाम है जनकपुरी सहारनपुर से ये हैं, और जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो और इनके पूरे परिवार वालों की तरफ
1: यस
0: से है।
1: सर। और इन्हीं के साथ साथ जलालाबाद वेस्ट है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और नमित आहूजा।
0: अगली फरमाइश करता लिखते हैं, मेरा नाम श्याम है, क्या बात है। मंगरा पूंजला जोधपुर से है ये, आपका भी बहुत बहुत फरमाइश में नाम शामिल किया जाता है। और अगले फरमाइश करता है, नाभा जिला पटियाला पंजाब से, सोम दत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमन और मनु, और साथ ही साथ श्याम भी हैं, और इनकी फरमाइश का आप हर मिलकर गीत इंजॉय करेंगे।
1: बिल्कुल। और इन्हीं के साथ साथ जैसलमेर से राजेश, देवराय, जयकिशन, आरती, विजय और बाबूलाल के साथ साथ डावरी भी है, और इन्होंने इसी गीत के लिए फरमाइश की, तो राहुल हम और आप मिलकर के सुनते हैं इनकी पसंद का ये म्यूजिकल ट्रैक।

0: आ गए लो ये युवानी वाले और सारे श्रोताओं आप सभी को सलाम। देखिए जी फिलहाल समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का।
1: इस आवाज का नाम राहुल और
0: बिल्कुल मैं था आपके साथ आपका रेडियो रागे रोहित, और आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति करी थी राजेश लाम रोड ने।
1: कंसोल पे हमारे साथ कल्याण, हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Pénsame. खेल जगतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। चौपाल सजेगी हमेशा की तरह शाम 7 बजे और कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज सुनिए 7:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। श्रोताओं, आज की प्रसारण सभा में फिल्म संगीत के कार्यक्रम

साथ ही रात्रि 10:30 पर भी आप सुनेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं, ये था आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण। आइए अब आपको सुनवाते हैं कल की प्रसारण सभा के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। श्री रामचरितमानस का भाग संख्या 49 आप सुनेंगे कल सवेरे 6:05 पर। वहीं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आप सुनेंगे 6:15 पर। कुछ बातें कुछ गीत यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा कल सुबह 7 से। आकाशवाणी के श्रोताओं की जानकारियों का डेली डोज यानी कि मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम आप सुन सकेंगे कल सुबह 8:30 से। श्रोताओं, कल सुबह 10:30 पर भजन गायक दिलीप गवैया के भजन आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत में। इनके साथ तबले पर संगत की है आमिर हुसैन ने और बांसुरी वादक है दीपक बोहरा। किसान साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत प्रसारित किया जाएगा कल दिन में 1:05 पर। नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका सुनिए कल दिन में 1:15 से। युवा साथी सुनेंगे युववाणी कल शाम 5 से। हमेशा ही की तरह चौपाल सजेगी कल शाम 7 और कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज सुनना ना भूले 7:30 पर। आपनो राजस्थान ये कार्यक्रम कल रात्रि 10 से रिले किया जाएगा आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से।

श्रोताओं, यह था कल की सभा के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं तक। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। पेश है देशगान।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार रिले किए जाएंगे। संस्कृत समाचारों के बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य जकार्तायां सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अवदत् यत् सहकार आन्दोलनं परिष्कार अंकीकरण व्यावसायिक प्रबन्धनानां माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः अवसरे 300+ विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते इति रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति।

0: अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां पुर्तगालदेशः स्पेनदेशं राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य राजधान्यां जकार्तायां सम्प्राप्तवान्। जकार्ता विमानपत्तने इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यमुना स्वयमुपस्थाय प्रधानमंत्रिणः भव्यं स्वागतं विहितम्। तत्र स्थानीय समुदायेन प्रवासी भारतीयैश्च पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतिभिः सह तस्य उत्साहपूर्णं अभिनन्दनं कृतम्। अष्टादशाधिक द्विसहस्रतमवर्षात् द्विपक्षीय सम्बन्धानां व्यापक रणनीतिक सहयोगस्तरस्य प्राप्तेः परं प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा द्विपक्षीय यात्रा अस्ति। श्रीमोदी प्रवासे राष्ट्रपतिना प्रवोवो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां विधाय सम्बन्धानां समीक्षां विधास्यति। सहैव सांस्कृतिक नगरे योग्याकार्ता स्थितं ऐतिहासिकं प्रम्बानन मन्दिर परिसरमपि द्रक्ष्यति, यत्र भारत इण्डोनेशिया देशौ मिलित्वा संरक्षणकार्यं करिष्यतः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री जकार्ता नगरे प्रवासी भारतीयानां समूहमपि सम्बोधयेत्। प्रस्थानात् पूर्वं प्रदत्ते स्वकीय वक्तव्ये तेन निगदितं यत् प्रवासोऽयं भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः महासागरीय दृष्टिकोणस्य सहैव मुक्त हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य च लक्ष्यं सुदृढीकरिष्यति। यात्रायाः द्वितीये चरणे अष्टदिनांकात् दशदिनांकं यावत् प्रधानमन्त्री ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणः एन्थनी अल्बनीज इत्यस्य निमन्त्रणं स्वीकृत्य मेलबर्न नगरे गमिष्यति, यत्र सः रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश उच्च प्रविधि क्षेत्रेषु विस्तृत चर्चां विधास्यति। सहैव तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं भजिष्यति। अन्तिमे चरणे जुलाई मासस्य 10-11 दिनांकयोः सः न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणः क्रिस्टोफर लक्सन इत्यस्य आवाहने ऑकलैंड नगरं प्राप्स्यति। विगत चत्वारिंशत् वर्षेषु कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा वर्तते, यत्र आर्थिक व्यापारिक सहयोगं वर्धयितुं मन्त्रणा भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य आध्यात्मिक गुरुं पवित्रं परमं दलाई लामा वर्यं तस्य 190वें जन्मदिने शुभाशयाः प्रेषिताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् तस्य शान्तेः सौहार्दस्य च सन्देशः सम्पूर्णे विश्वस्मिन् जनानां कृते मार्गदर्शक शक्तित्वेन विद्यते। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् दलाईलामा वर्यस्य नैतिकम् आध्यात्मिकं च जीवनं वैश्विक कल्याणार्थं तस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। अत्रावसरे सः दलाईलामा वर्यस्य दीर्घं स्वास्थ्यं च जीवनं प्रार्थयत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह अद्य अवदत् यत् सहकार आन्दोलनं परिष्कारस्य अंकीकरणस्य व्यावसायिक प्रबन्धनस्य च माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। सहकारिता मन्त्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवसं सम्बोधयन् श्रीशाहः अवदत् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे पञ्चसु उत्तम प्रदर्शन सहकार संस्थानां परिचयं कर्तुं श्रेणी संरचना घोषितास्ति। गृहमन्त्री श्रीशाहः सहकारिता मन्त्रालयस्य प्रशंसाम् अकरोत् यत् विगत पञ्चवर्षाणि यावत् सहकारस्य माध्यमेन समृद्धेः मन्त्रस्य अनुसरणं कृत्वा कोटिशः जनानां जीवनं परिवर्तितमस्ति।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: रेल मंत्री

0: अश्विनि वैष्णव प्रावोचत् यत् अस्मिन् वर्षे भगवत जगन्नाथस्य रथयात्राया अवसरे त्रिशताधिकानि विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते। एतानि यानानि नियमितरूपेण प्रचलद्भ्य अष्टशताधिकेभ्य रेलयानेभ्य अतिरिच्य भविष्यन्ति, येन यात्रिणां गतागतं सौकर्यमयं स्यात्। अद्य नवदिल्ल्यां संवाददातृभिः सह सम्भाषमाणः श्रीवैष्णवः प्रोदीरितवान् यत् रथयात्रायाः सुचारुसञ्चालनं सुरक्षितप्रबन्धनं च सुनिश्चेतुं सः अद्यैव रेलविभागीयसिद्धतायाः उच्चस्तरीयां समीक्षां विधास्यति।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: निर्वाचन आयोगेन पश्चिम बंगाल राज्यस्य राज्यसभायाः त्रिषु आसनेषु उपनिर्वाचनस्य घोषणा कृता अस्ति। राज्यसभायाः सदस्यानां सुखेन्दु शेखर रे, सुष्मिता देवः, प्रकाश चिक बड़ाईकः इत्येतेषां त्यागपत्रस्यानन्तरं स्थानानि रिक्तानि आसन्। निर्वाचनस्य संचेतना श्वः प्रकाशिता भविष्यति। नामांकनस्य अन्तिमा तिथिः जुलाई मासस्य 14 दिनांकं यावत् अस्ति। जुलाई मासस्य 15 दिनांके नामांकनानां परीक्षणं भविष्यति। एतेषां आसनानां कृते जुलाई मासस्य 24 दिनांके मतदानं भविष्यति, तस्मिन्नेव दिने मतानां गणनापि भविष्यति। महाराष्ट्रस्य विशालः भागः प्रावृतवृष्ट्या निरन्तरं प्रभावितः अस्ति, यत्र मुम्बई कोंकण प्रदेशयोः च व्यापकरूपेण जलाप्लवनं, भूस्खलनं, भवनानां पतनं, मार्गेषु रेल विमानयानेषु च महती बाधा दृश्यते। सम्पूर्णे राज्ये आदिवसं यावत् प्रचण्डवृष्ट्याः अनुवर्तनेन अधिकारिणः सजगतायां तिष्ठन्ति। अधिकारिणः नागरिकान् अनावश्यकीं यात्रां परिहर्तुं प्रार्थयन्ति। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसः एसडीआरएफ इत्यस्य स्थितिं समीक्षितवान्। सर्वेभ्यः अधिकारिभ्यः शीघ्रं समन्वित कार्याचरणाय निर्देशोऽपि प्रदत्तवान्। प्रचण्डवृष्ट्या सम्पूर्णे कोंकणप्रदेशे बह्व्यः भूस्खलनानि अपि अभवन्, येन मुम्बई गोवा राष्ट्रिय राजमार्गे यातायातः प्रभावितः। अत्रान्तरे भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अत्यधिक वृष्ट्या सह केषुचित् स्थानेषु अत्यधिक अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। उत्तरी अरब सागरस्य केषुचित् भागेषु, गुजरात राज्ये, हरियाणा पंजाब राज्ययोः शेषभागेषु, राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु च अग्रिमेषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृतचक्रस्य अग्रे गन्तुं परिस्थितिः अनुकूलास्ति इति विभागेनोक्तम्। गतरात्रौ विम्बल्डन टेनिस क्रीडायां सर्बिया देशस्य नोवाक जोकोविच इत्यसौ रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिन इत्येतं पराजित्य पुरुष एकल स्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचक्रीय क्रीडायां प्रविष्टवान्। अग्रिमायां प्रागुपान्त्यचक्रीय क्रीडायां जोकोविच इत्येषः फेलिक्स ऑगर अलियासिमे इत्यनेन, एलेजान्द्रे डेविडोविच फोकिना इत्यनेन सह सम्मुखीभूयात्। फीफा विश्वकप क्रीडायां पुर्तगाल देशः स्पेन देशं राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखीकरिष्यति। अद्य मैक्सिको नगरस्य एजटेका क्रीडांगणे मैक्सिको देशस्य विरुद्धं नाटकीयतया 3-2 इत्यंकैः विजयं प्राप्य इंग्लैंड देश फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ। करौली जिले के पांचना बांध में गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र के नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत हुई। राज्य में गंभीर अपराधों से 4% की कमी, डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। और प्रदेश के 13 जिलों में कल बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। देश में सहकारिता के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है और समृद्धि का रास्ता खुला है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है। श्री शाह सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सहकारी बैंक आज करीब 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता के बढ़ते योगदान को दर्शाता है। गृहमंत्री ने कहा कि राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की गतिविधियों को बढ़ाकर उन्हें मजबूत किया जा रहा है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: श्री शाह ने कार्यक्रम में जयपुर के सुमेल गांव में सहकार वन परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। इसमें 64 एकड़ जमीन पर सहकार वन विकसित किया जाएगा, जिसमें खेजड़ी, रोहिड़ा और नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ प्रदेश में हर गांव और ढाणी में सहकारिता आंदोलन पहुंचा है। राज्य की 42,000 से अधिक सहकारी समितियों से 1,35,00,000 से ज्यादा सदस्य जुड़े हैं। वहीं सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,90,000 से अधिक नए सदस्य जोड़े गए हैं।
2: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के बीच आपसी साझेदारी पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी जकार्ता में प्रवासी भारतीय समुदाय की सभा को भी संबोधित करेंगे। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया प्रवास पर रहेंगे। इसके बाद वे न्यूजीलैंड भी जाएंगे। करौली जिले के पांचना बांध से आज गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़ा गया। इससे किसानों का लगभग 20 साल लंबा इंतजार समाप्त हुआ और अब उन्हें सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने 2 नई पीडीएन आधारित लिफ्ट परियोजनाओं और गुडला लिफ्ट योजना की आधारशिला रखी। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री श्री रावत ने कहा कि इससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा।
3: निश्चित रूप से हमारा जो पांचना बांध है, इस पे लाखों लोगों की आस्था है, कई लोगों के आजीविका का उपार्जन का एक साधन है, तो निश्चित रूप से 5 नदियों के इस संगम और तीर्थ स्थली पर्यटक के रूप में भी विकसित हम करेंगे। तो आज ये 61 करोड़ की परियोजना आज हमने इसका शिलान्यास किया और मेरे विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स को मैंने डायरेक्शन दिया है कि ये तय सीमा पे पूरी हो और गुणवत्ता से पूरी हो और सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सहयोग किया।
0: गौरतलब है कि पांचना बांध के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से कमांड और गैर कमांड क्षेत्र के किसानों के बीच विवाद था, जिसे लेकर दोनों पक्षों ने आंदोलन भी किए। राज्य सरकार ने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर आपसी सहमति से समझौता करवाया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन

0: www.kpir.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता कर पुलिस की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंभीर अपराधों में 4% से अधिक की कमी आई है। वहीं पेपर लीक माफिया पर प्रभावी कार्यवाही, नशा तस्करों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त अभियानों ने प्रदेश में पुलिसिंग को नई पहचान दी है। राजस्थान पुलिस अकादमी में हुई इस प्रेस वार्ता में पुलिस महानिदेशक ने पुलिस कार्य प्रणाली का पिछले 6 महीनों का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि अपराधों की मदद से संपत्ति अर्जित करने वालों को आर्थिक लाभ से वंचित करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। साइबर धोखाधड़ी और नारकोटिक्स का जिक्र करते हुए पुलिस महानिदेशक ने इस क्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए और तेजी से काम करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्मार्ट पुलिसिंग पर जोर दिया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में जांच को तेज किया गया है। पॉक्सो के तहत दर्ज प्रकरणों में पुलिस का औसत अनुसंधान समय 78 दिन से घटकर 51 दिन और दुष्कर्म के मामलों में 81 दिन से कम होकर 52 दिन रह गया है।
1: महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेके, और उसके आधार पे जहां पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे।
0: प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक और शिक्षाविद डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समूचा देश उन्हें याद कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने प्रदेश के 4 प्रमुख पार्कों का नाम श्री मुखर्जी के नाम पर करने और उनके आदर्शों को समर्पित स्मारक स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जयपुर स्थित वुडलैंड पार्क, जोधपुर के विवेक विहार स्थित सेंट्रल पार्क, कोटा के रामचंद्रपुरा अटवाल नगर स्थित पार्क तथा उदयपुर की सेक्टर 12 योजना के पार्क का नामकरण डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किए जाने का ऐलान किया। साथ ही इन सभी स्थानों पर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को प्रदर्शित करने वाले स्मारक भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्रदेशवासियों को, विशेष रूप से नई पीढ़ी को, श्री मुखर्जी के आदर्शों और विचारों से जोड़ेगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के मौके पर प्रदेश में अनेक स्थानों पर पौधरोपण और पुष्पांजलि कार्यक्रम रखे गए। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में डॉ श्यामा मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर संगोष्ठी रखी गई। पूर्वी भारत में हवाओं के कम दबाव से राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 9 जुलाई तक उदयपुर और कोटा संभाग तथा आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बरसात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। उधर जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी अगले 2 दिनों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ 13 जिलों में बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट बताया है। इस बीच आज तेज गर्मी और उमस के बाद बालोतरा में अच्छी बारिश हुई। जैसलमेर, बाड़मेर जिले के शिव तथा चौहटन में भी धूलभरी आंधी चली और कई इलाकों में तेज पानी बरसा। जालौर के आहोर, सायला, भीनमाल, बागोड़ा में तेज हवाओं के साथ रिमझिम बरसात हुई। झुंझुनू में भी तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर चला। उधर पाली और राजसमंद जिले के कुमलगढ़ में करीब 1 घंटा मूसलाधार बरसात हुई। जून महीने से अब तक बीकानेर, चूरू और डीडवाना कुचामन में असामान्य बरसात हुई है। वहीं 10 जिलों में अत्यधिक, 18 में सामान्य और 10 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा। प्रदेश के छोटे बड़े 693 बांधों में से 394 इस समय आंशिक रूप से भरे हुए हैं। वहीं 5 बांध पूरी तरह से भर गए हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर आज से प्रदेश में विशेष अभियान शुरू किया गया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने आज जयपुर में मीडिया से बातचीत में बताया कि ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। सड़क हादसों की रोकथाम करने और यातायात नियमों की पालना के लिए

0: जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। चूरू जिले के रावतसर कुंजला गांव में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। दो अलग अलग मकानों पर दी गई दबिश में आरोपियों के कब्जे से 90 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार ये लोग पहले साइबर ठगी के बचाव के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने की बात करते हैं। इसके बाद लोगों को झांसे में लेकर रूपये ऐंठने का काम कर रहे थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन से सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ। करौली जिले के पांचना बांध से गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्र के नहरों में पानी छोड़ने की शुरुआत हुई। राज्य में गंभीर अपराधों में 4% की कमी, डीजीपी राजीव शर्मा ने पुलिस की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। और प्रदेश के 13 जिलों में कल बरसात का ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पिछले दिनों मौसम के कई रंग देखने को मिले। भीषण गर्मी और उमस के बीच कल मॉनसून ने दस्तक दे ही दी। बारिश की फुहारों ने जिलेवासियों को कुछ राहत प्रदान की, लेकिन उमस के चलते लोग परेशान रहे। इससे पहले आंधी तूफान और बारिश ने बिजली विभाग को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जिले में 1500 से अधिक बिजली के खंभे गिर गए। बेमौसम की बरसात से 400 से अधिक गांवों और ढाणियों की बिजली की आपूर्ति बाधित हुई। जिले के रामगढ़ क्षेत्र में 20 किलोवाट क्षमता के एफएम स्टेशन का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पिछले दिनों वर्चुअल रूप से किया गया। एफएम ट्रांसमीटर के लगने से सरहदी इलाकों के नागरिकों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों की बेहतर गुणवत्ता के साथ विस्तारित कवरेज मिलेगी। साथ ही स्थानीय समाचारों, जनहितकारी योजनाओं, शैक्षणिक कार्यक्रमों और कृषि संबंधी जानकारी का प्रसारण प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सकेगा। ग्रामीण विकास को नई दिशा देने और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत जिले भर में ब्लॉक स्तर पर जनसम्मेलन आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। पंचायत समिति जैसलमेर की रूपसी ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय सम्मेलन रखा गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल सहित प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर रूपसी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोषण वाटिका निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। जिले के पर्यटन और रियल एस्टेट सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नगर विकास न्यास ने महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। मूल सागर क्षेत्र में प्रस्तावित योजना के तहत 142 फार्म हाउस भूखंडों और 46 व्यावसायिक दुकानों की खुली नीलामी की जाएगी। इस परियोजना से न केवल जिले में निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यूआईटी को इस परियोजना से 22 करोड़ रूपये से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को लेकर पोलियो बूथों पर विशेष उत्साह देखने को मिला। अभियान के तहत श्री जवाहर चिकित्सालय में विधायक छोटू सिंह भाटी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहले दिन वंचित रहे बच्चों को अगले दो दिन तक घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों ने पोलियो रोधी दवा दी। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाले जैसलमेर में पर्यटकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला पुलिस ने विशेष पहल की है। इसके तहत स्वर्ण नगरी के होटलों में ठहरने वाले सभी मेहमानों का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से ई विजिटर्स पोर्टल पर दर्ज करवाना होगा। इसे लेकर बीते दिनों बैठक आयोजित कर होटल संचालकों को इस प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी दी गई। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। शहर से लेकर सरहद तक योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योगाभ्यास कार्यक्रम हुए। जिला स्तरीय कार्यक्रम शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में रखा गया। इसके अलावा शहर के पर्यटन स्थल सोनार किला और गढ़सीसर झील के साथ ही ब्लॉक और पंचायत स्तर पर भी कई कार्यक्रम हुए। नियमित और सुचारू पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पिछले दिनों गजरूप सागर स्थित विभागीय परिसर में 5 नलकूपों का लोकार्पण किया गया। 55 लाख रुपए की लागत से बनाए गए इन नलकूपों के शुरू होने से जैसलमेर शहर की पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों की पानी की समस्या भी दूर होगी। केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों

0: को आम जन तक पहुंचाने के लिए पिछले दिनों नगर परिषद सभागार में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। 3 दिन की ये प्रदर्शनी 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के थीम पर आधारित रही। जिले के सूली डूंगर सनसेट पॉइंट को विकसित कर पर्यटन स्थल के तौर पर पहचान दी जाएगी। नगर परिषद ने इस स्थान को मॉल रोड की तर्ज पर विकसित करने की खास योजना शुरू की है। प्रोजेक्ट से नगर परिषद को हर साल 38.5 लाख रुपए का राजस्व मिलेगा। पर्यटकों के लिए जैसलमेर में सनसेट देखने का सूली डूंगर सबसे पसंदीदा स्थल है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना 2 के तहत अब जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्रों के गांवों का कायाकल्प किया जा रहा है। योजना के तहत बॉर्डर पर बसे सुदूर गांवों को विकास और बुनियादी सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा। गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी तमाम आधुनिक सुविधाओं का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है, जहां 3 करोड़ रुपए की राशि से ये विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। केंद्रीय मंत्री अमित शाह काया सुधार डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सु सहकारिता रा हल्का माए घणो बढ़ावो भी है। करौली जिला रा पांचना बांसू गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्री री नहरा माए पानी छोड़ बारी शुरुआत भी। राज्य माए गंभीर अपराध माए 4% सु बत्ती री कमी, डीजीपी राजीव शर्मा पुलिस री उपलब्धियां रो ब्यौरो पेश करियो। और प्रदेश रा 13 जिला माए काल बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला माए येलो अलर्ट जारी।

0: समाचार आरएस आ गए, मैं रचना पारिक और अब समाचार विगतवार। देश में सहकारिता रे मार्फत लाखों लोगारा जीवन में बदलाव आयो है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कया के सुधारा डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सु सहकारिता हल्का में घणो इजाफो भयो है। श्री शाह सहकारिता मंत्रालय रा पांचवा स्थापना दिवस रे मौके राख्या जलसा माए बोल रिया हा। वे कया के हर एक खेतर माए बत्तो चोखो प्रदर्शन करबा वाली पांच सहकारी समितियां ने मान्यता देबा खातिर रैंकिंग ढांचो ऐलान करियो गयो है। सहकारी बैंक आज करीब 27 लाख करोड़ रूपया रो कारोबार करे है और देशरी माली व्यवस्था माए सहकारिता रा बढ़ता योगदान ने दर्शावे है। गृहमंत्री कया के राज्य माए प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्सरी गतिविधियां ने बढ़ार मजबूत करियो जा रियो है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये पांच साल में किया है।
0: श्री शाह कार्यक्रम में जयपुरा सुमेल गांव में सहकार वन परियोजना की शुरुआत करी। इनमें 64 करोड़ जमी माथे 64 एकड़ जमी माथे सहकार वन विकसित करो जावेला, जिनमें खेजड़ी, रोहिड़ा और नीमरा पेड़ लगाया जावेला। इन मौके मुख्यमंत्री कया के सहकारिता आर्थिक सशक्तिकरण रो जरियो बनियो है। सहकार समृद्धि का मंत्र रह सागे ही प्रदेश रा हर एक गांव और ढाणी माए सहकारिता आंदोलन पूग्यो है। राज्य री 42,000 सु 32 सहकारी समितियां सु 1,35,00,000 सु 32 सदस्य जुड़िया है। ने सहकार सदस्यता अभियान रे तहत 80,90,000 सु 32 युवा सदस्य भी जुड़िया है।
2: सहकारिता से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध करवाया। आपने देश को

0: सहकार से समृद्धि का एक ऐसा मंत्र दिया जिसने देश के गांव, गरीब किसान मजदूर की तकदीर बदलने का काम किया है। इसी वजह से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सहकारिता और डेयरी सेक्टर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ति दे रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल हूं थोड़ी देर पहली इंडोनेशिया राज जकार्ता पूग्या। इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हवाई अड्डा मा थे प्रधानमंत्री मोदी रो स्वागत करिया। इन यात्रा रे दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी इंडोनेशियाई राष्ट्रपति रे सागे दोनों देशां रे बीच आपसी साझेदारी माथे चर्चा करेला। श्री मोदी जकार्ता माए प्रवासी भारतीय समुदाय सभा ने भी संबोधित करेला। तीन देशां री यात्रा रा दूजा फेर मा श्री मोदी 8-10 जुलाई ताई ऑस्ट्रेलिया प्रवास माथे रहवेला। इनरे पछे वे न्यूजीलैंड भी जावेला। करौली जिला रा पांचना बांध सु आज गंभीरी नदी और कमांडा हलकारी नहरा माए पानी छोड़ियो गयो। इनसु कास्कारा रो करीब 20 बरस लंबो इंतजार पूरो व्यू। अबे वाने सिंचाई खातर पानी मुहैया वह सकेला। इन मौके व्या कार्यक्रम माए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म दोनों भी पीडीएन आधारित लिफ्ट परियोजनावा और गुडला लिफ्ट योजनारी नींव राखी। इन मौके जल संसाधन मंत्री श्री रावत कया कि इनसू सिंचाई व्यवस्था मजबूत वेला और खेतर आकाशकारा ने फायदो वेला।
2: निश्चित रूप से हमारा जो पांचना बांध है इस पे लाखों लोगों की आस्था है, कई लोगों के आजीविका का उपार्जन का एक साधन है, तो निश्चित रूप से पांच नदियों के इस संगम और तीर्थ स्थली पर्यटक के रूप में भी विकसित हम करेंगे। तो आज ये 61 करोड़ की परियोजना आज हमने इसका शिलान्यास किया और मेरे विभाग के अधिकारी इंजीनियर्स को मैंने डायरेक्शन दिए कि तय सीमा पे पूरी हो और गुणवत्ता से पूरी हो और सभी पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सहयोग किया।
1: ध्यान जोग है कि पांचना बांधरा पानी रा बंटवारा बाबत लंबा टेमू कमांड और गैर कमांड हलकारा किसाना रे बीच विवाद चाल रहे हो जिनने लेर दोनों पक्ष आंदोलन भी करिया। राज्य सरकार दोनों पक्षारा नुमाइंदा सु बातचीत कर आपसी सहमति सु समझौतो करवायो। ये समाचार आप आकाशवाणी राज्यपुर अजमेर केंद्र सुन रिया हो। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा आज जयपुर माए प्रेस वार्ता कर पुलिस उपलब्धियां बताई। वणा कया के प्रदेश माए गंभीर अपराध माए 4% सु बत्तीरी कमी आई है। वटी ने पेपर लीक माफिया माथे कड़ी कार्रवाई। नशा तस्कर और समूह माए करिया गया अपराध रे खिलाफ करोड़ों अभियान प्रदेश री पुलिसिंग ने नई पिछाण दी है। राजस्थान पुलिस अकादमी माए भी इन प्रेस वार्ता माए पुलिस महानिदेशक पुलिस कार्यप्रणाली रो लारला 6 मीनारो लिखो जखो पेश करियो है। वणा कया के अपराधरी मददसु संपत्ति इकट्ठी करबा वाला ने माली फायदा सु वंचित करबारी कोशिश तेज करी जारी है। साइबर धोखाधड़ी और नारकोटिक्स रो जिक्र करता थका पुलिस महानिदेशक इन हलकारी चुनौती ने देखता थका और तेजी सु काम करबारी जरूरत बताई। वे कया के इन खातर स्मार्ट पुलिसिंग माथे जोर दियो जावेला। डीजीपी बताया कि महिला सुरक्षा सु जुड़िया मामला माए जांच ने तेज करियो गयो है। पोक्सो तहत दर्ज प्रकरण माए पुलिस री जांच री मियाद 78 दिन सु घटार 51 दिन और दुष्कर्म रा मामला माए 81 दिन सु घटार 52 दिन रहगी है। वना बताया कि साइबर अपराधारी रोकथाम और पीड़िता ने बेगी राहत देबा खातर बत्ती और प्रभावी कार्यवाही करी जा रही है।
3: महिला सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी प्राथमिकता रही है, उसमें और अधिक कार्य करने की दृष्टि से हम सबसे पहले जयपुर शहर में एक सर्वेक्षण कराएंगे महिला सुरक्षा को लेके और उसके आधार पे जहां पे हमें और अधिक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी उसको हम करेंगे। साथ ही साथ इसी तरह का समान कार्रवाई अन्य बड़े शहरों से प्रारंभ करके हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने पुलिस अधीक्षक गणों के माध्यम से कराना चाहेंगे।

0: राष्ट्रवादी चिंतक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती माथे समूचो देश वाने याद करियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अपरा रहवास माथे वाने पुष्पांजलि अर्पित करी। इन मौके श्री शर्मा प्रदेश खास चार पार्कारो नाम श्री मुखर्जी रा नाम माथे करबा और वारा आदर्शाने समर्पित स्मारक स्थापित करबारो ऐलान करियो। मुख्यमंत्री जयपुरा वुडलैंड पार्क, जोधपुरा विवेक विहार रा सेंट्रल पार्क, कोटारा रामचंद्रपुरा अटवाल नगर रा पार्क और उदयपुरा सेक्टर 12 योजना रा पार्क रो नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रा नाम माथे करबारो ऐलान करियो। साथ ही इन सगली ठोड़ा माथे राष्ट्रकानियों वारा योगदान ने प्रदर्शित करबा वाला स्मारक भी बनाया जावेला। मुख्यमंत्री कया के पहली प्रदेशवासियों ने खास रूप नवी पीढ़ी ने श्री मुखर्जी रा आदर्शारा विचार सु जोड़िया जावेला। भारतीय जनसंघ रा संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी री 125वीं जयंती रे मौके प्रदेश में कई ठोड़ा माथे पौधा लगाया गया और पुष्पांजलि कार्यक्रम राखिया गया। पूर्वी भारत हवावारा कम दबाव सु राज्य रा पूर्वी हिस्सा माए आवता 4-5 दिन तय मानसून सक्रिय रह सके है। इन दौरान बत्ता हल्का माए हल्की सु मध्यम और कटे कटे भारी में बरस सके है। 9 जुलाई तय उदयपुर और कोटा संभाग रे आरे सारे रा हल्का माए कटे कटे भारी सु घनी भारी बरसात वे सके है। मौसम महकमा रे मुजब आज अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर संभाग रा कुछ एक हिस्सा माए गरज रे साके तेज बारिश वे सके है। पठिने जोधपुर और बीकानेर संभाग माए भी आवता 2 दिना माए कुछ एक हल्का माए भारी में बरस पारा आसार है। महकमो काल तेज हवावां और गरज चमक रह सागे 13 जिला माए बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला माए येलो अलर्ट बतायो। इन बीच आज तेज गर्मी और उमस रे पछे बालोतरा माए चोखो में बरसियो। जैसलमेर, बाड़मेर जिला रा शिव और चौहटन माए भी धूल भरी आंधी चाली और कई इलाका माए तेज पानी बरसियो। जालोर रा आहोर, सायला, भीनमाल, बागोड़ा माए तेज हवावारे सागे रिमझिम में बरसियो। झुंझुनू माए भी तेज हवावारे सागे छितरायो में बरसियो। वठेने पाली और राजसमंद जिला रा कुंबलगढ़ माए भी करीब 1 घंटा मूसलाधार में बरसियो। जून महीना सु हालतय बीकानेर, चूरू और डीडवाना कुचामन माए भी में बरसियो। वठेने 10 जिला माए 18 और सामान्य और 10 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो। प्रदेश का छोटा बड़ा 693 बांधा माए सु 394 माए टेम थोड़ा टेम माए पानी भरियो। वठेने 5 बांध माए थोड़ो पानी भरियो है। आज विश्व जुनोरिस दिवस है। ओ दिन जिनावरा सु मिनखा माए फैलवा वाली संक्रामक बीमारियां रा खतरा और उनसु सावचेती बरसबा और जाग जगाबारा लगा सु मनायो जावे है। जूनोटिक बीमारियां जन स्वास्थ्य जिनावराई सेहत और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा खातर बड़ो खतरो है। पशुआ और मिनखरा स्वास्थ्य सुरक्षित रखबा खातर पालतू जिनावरों टेम माथे टीकाकरण करायो जानो जरूरी है। और अब आखिर माए खास खबर एकर फेरू। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कया सुधार, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन सु सहकारिता रा हल्का माए घणो बड़ा वो है। करौली जिला रा 5 बांसू गंभीरी नदी और कमांड क्षेत्री नहरा माए पानी छोड़ वाली शुरुआत भी। राज्य माए गंभीर अपराध माए 4% सु 32 कमी, डीजीपी राजीव शर्मा पुलिस उपलब्धियां रो ब्यूरो पेश करियो। और प्रदेश रा 13 जिला माए काल बरसात रो ऑरेंज और 20 जिला माए येलो अलर्ट जारी। इन सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अटवी पुरुभियो माकलो आगलो समाचार बुलेटिन काल सुमारे 9 हिंदी माए प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 7 हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

गांव ग्वाड़ अर खेत खलियान री बात। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्स। सिंजिया 7 बजिया सुनो ना भूलो आप रो पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

Jeremy. चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत हर सोमवार सिंजिया 7 बजिया आप सुन सको हो आपरो पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम चिरमी। कार्यक्रम सुनना सगला हेतालु श्रोताओं ने घणे मान सु गुरविंदर बिश्नोईरा राम राम अर नमस्कार।

0: राजस्थानी लोक गीता और लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथे है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई गांव पावना सर जैसलमेर सु जितेंद्र पंवार गुलाब पंवार तेजपाल नेपाल पंवार पारस पंवार गोविंद पंवार गौतम पंवार रमेश चंद्र चौहान मोहनी चौहान कल्पित चौहान बेबी गर्वी और आना घराला माने ईमेल भेजू है कुड़ी हाउसिंग बोर्ड सु झालावाड़ सु कागज आयो है लिखण वाला है हर्षिता रामेश्वर काना सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर बाई और प्रभुलाल बागरी
1: बदवासिया सु कृष्णा राम सांसी पप्पू राम सांसी कंवर राम सांसी और विनोद सांसी व्यास कॉलोनी एयरफोर्स सु चुन्नी देवी मेघवाल बिंदु मेघवाल कार्तिक हिमांशु विनोद मेघवाल और आणा घराड़ा
0: सारण नगर बाड़मेर सु महराज सारण हीरा सारण हितेश राज नवप्रीत सारण और आना साथ गांव जेसला तहसील फलोदी सु राजा राम जंवर और आना साथी फलोदी सु ईमेल भेजियो है सुभाष लेखावत और कागज माने कन आयो है जोधपुर सु लिखियो है रघुवीर किशोर देवेंद्र सिंह जबर सिंह खींची और रतन सिंह खींची
1: और ईमेल आयो है चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सु भेजन वाला है दिनेश सोडा रुद्राक्ष सोडा भव्यांश रमनदीप और राम किशोर और कागज आयो है इंदिरा कॉलोनी महा मंदिर सु श्याम डागर राजेंद्र गोपाल मरेठा रमेश सांखला जीतू बाडुलिया नंदू भाई वगलू राम गहलोत और आणा घना सारा साथी पांचला खुर्द सु ईमेल भेजन वाला है दौलाराम बेणीवाल खारिया खुर्द आडेल बाड़मेर सु कमरा राम सतीश सारण सारो देवी और चंद्रिका गांव कंटालिया सु भीखाराम मौर्य सीता देवी मौर्य विजय प्रकाश गोमती माणकचंद मंजू देवी जयेश और मनीष मौर्य खिमसर नागौर सु कल्याणमल प्रभु राम वंशीलाल हेमाराम शोभाराम मौर्य और आणा सगला साथी
0: तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आ रचना

राजस्थानी लोक गीता अर लोक भजनारो ओ है फरमाइशी कार्यक्रम और आप रे साथ है आप रो साथी गुरविंदर बिश्नोई गांव मेलाना सू छैलाराम मेघवाल रविंद्र देवेंद्र अनीता और फूली देवी मेघवाल ओ ईमेल आयो है धन्ने की ढाणी तहसील सिणधरी सू गणेश तरड़ चेतन गिलकी प्रमोद पारसी ममतेश मोहनलाल तरड़ और विकास तरड़ रो मलोट कैंप पंजाब सू माने कागज लिखियो है डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया और आना सगला घर वाला और ईमेल आयो है गांव बीकम कोर सू गौतम परिहार अरविंद परिहार सोहन परिहार आरती दुर्गा मंजू संगीता कुलदीप हंसपाल और ओम प्रकाश परिहार आगलो कागद है गांव अरनियाली धोरी मीना बाड़मेर सू लिखन आला है फरसाराम खत्री भवानी शंकर खत्री पंकज खत्री रेखा निर्मा किरण सूरज शारदा भाग्यश्री हार्दिक खत्री और आनो सगड़ो खत्री परिवार और कागद आयो है फाचिल का सू लिखियो है भूषण विशाल शालीन खेड़ा आरबी खेड़ा जीवन सिंह बुक और खेड़ा परिवार और ईमेल आयो है गंगा सिंह का खेड़ा भीम सागर सुजानगढ़ सू लिखियो है मदन सिंह राठौड़ और आना सगड़ा घरवाड़ा गांव खारा बेरा भीमावता सू माने कागज लिखे माना नियमित श्रोता है राजू राम सेन पद्मा सेन और प्रतिज्ञा सेन और ईमेल माने कनायो है सादुल शहर जिला श्री गंगानगर सू लिखण वाला है राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ और आना सगड़ा साथी आगलो ईमेल आयो है भोपालगढ़ सू घनश्याम सिंह चौधरी और अंकित चौधरी।

0: और आना सगला साथी खारड़ा भारत सिंह सु खरता राम माचरा भैरा राम रेखा राम माचरा उम्मीदा राम चेतन भूम सिंह और आना सगला साथी।
1: तो साथिया सुना आप सबारी पसंद माते आर

अब आर आप सुनियो राजस्थानी लोक गीता रो फरमाइशी कार्यक्रम। अब कार्यक्रम रो बगत हो रियो है पूरो, तो आप रे साथी गुरविंदर बिश्नोई ने अनुमति दिराओ। राम राम अर नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं।

0: अरे फटक ने खोल दो ते, मैं बारिया मरू नवला माँ खोलो गदियो।
1: अरे फटक उड़ा लिया मैं आऊंगी कौन कौन नहीं थे।
0: अरे मारे ओ देखो कंधो रह गया ने ऊंचा ऊंचा नो पड़े। अरे अरे अरे
1: अरे उल्लो कई कई नहीं है
0: नवलोबा। देखो हमें थे ठंड में बताए दू ए रुकड़ा है थे ठंड अगर जस्ती होवे तो बाय लो हमें आज कहीं है वन महोत्सव सप्तारो लगभग लगभग पूरा होने वालो है। एर छठो दिन है बड़े काले लास्ट है। आज माने पेड़ दिया है, दिया है पौधा दिया है, थारू लगता हुआ तो लगा लो नहीं तो मैं तो ऐ जाऊँ।
1: अरे भाई ठीक ठीक ठीक है ओ बन मैक मो है जो तो बांट बेकार नहीं क्या बांट यानी
0: हाँ
1: आ जाई ही गाड़ी हूँ हुनी
0: तो थे लिया को नहीं बांग करूँ।
1: अरे मैं तो उठे थे बो क्या नहीं क्या बो खेती बाड़ी और मैक में माई उठे हुई
0: की कोनी नवलोबा थाने का ये ले नावन में लावे जोर आवे थाने नवलोबा मारा खोरी मारा ही कंधा तोड़ो थे नी मैं तो अटे ले ले नाऊ के नवलोबार बढ़िया फल फ्रूट वाला पेड़ लेन जाऊं है थे जी को मैं लार लान दिया मैं लगाई दिया हैंग।
1: अरे हूँ एक बात पूछो किस दूरी
0: कहो
1: के ए कोई कह नहीं पौधिया लयो फल हाथ लगुड़ाया
0: यू थोड़ी आवे कोई पचे
1: कहूँ है जितना।

0: टाइम माते आजकल आवे ही कोनी नव लोबा कोई रूत था ना टाइम माते लागी हम की
1: तो देखा है कि धरती बीज कदी नहीं गमावे
0: हां
1: हूं एक दो आंकड़ी रो गीत सुनऊं
0: हां होड़ा होड़ा
1: फच है
0: आज तो नव लोबा होड़ा है
1: ले हुण

0: ऑर्गेनिक बतन वास्ते बात है।
1: हाँ बात अच्छी है नवलो
0: बात करे कर।
1: आज रे विगत बार में आपने मैं
0: हर कर्म हम ऑर्गेनिक करनो सही है नी।
1: हाँ
0: तो मात्र भूम बात करो तो कितना बिल्ला मिन्ने कह चुका हुआ जेको कह नहीं के खाली पेट भरने को जलमिया नहीं
1: आज जन्मदिन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रो और बे नवलोबा राजनेता शिक्षाविद बैरिस्टर और राष्ट्रवादी विचारक होता और स्वतंत्र भारत रा पहला उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी रिया था।
0: ओ बड़ा कह रही भाई बहुगुणी मिनखा।
1: हाँ
0: और ए है जिसको देखे की एक बात कई बार मनी याद है
1: कहो
0: ए कहो भाई के पूरे देश में एक विधान
1: हाँ
0: एक संविधान
1: हाँ
0: एक झंडा
1: हाँ
0: और एक ही है जिसको राज होनो सही है
1: बात
0: कश्मीर वाली है। कश्मीर में तो है कि श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी है नी बे उठे शहीद हुआ ठीक है नी देश रिवाज से भाई देखे बे विचार मोटो क्या नहीं विचार में है कुछ है
1: सही बात
0: ठीक है नी तो बे जनसंघ बनायो मन याद
1: है नी।
0: हाँ
1: थे गया था कहीं
0: अरे गया बड़ा तो मैं तो कहीं कटी कोई संघ
1: थे तो है जगह फिरोड़ा बच कश्मीर ही जाप रहे हो तो गया क्यों बोली तो
0: गया भाई पर की कोनी है तो देखे देश रे में उद्योग धंधा जी नीव धरनाला ऐ हा श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और अपन देश में देखे हैंग तरह का विचार विचारधारा लोग है।
1: हाँ है
0: तो बे मोटा काम कर गया माने कोई नहीं भूल सके माने परबा ते पर धोक देवा कोटी कोटी नमन करा मन रे भूल चला बड़े
1: बड़े नवलोबा। आज एक और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आपा याद महान समाज सुधारक लक्ष्मीबाई केलकर जी वाणी भी आज जन्मदिन है नवलोबा और राष्ट्र सेविका समिति री संस्थापिका होता
0: जगत देश री कहनी आजादी कह भाई संग्राम में भाग लियो।
1: हाँ
0: और कहनी भाई लुगी जाति लारे री कोनी
1: नहीं सर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लियो
0: बिरला मिनक
1: हा
0: परोपकारी हा
1: हाँ।
0: और गुलाम मीने कह नी मेटन छोड़ी
1: हाँ।
0: और थानू है जो कि हुए कोई करे मैं तो
1: थानू हुए तो मारो
0: वाह वाह बोल रहे भाई है कोटी कोटी नमन करा लक्ष्मी भाई ने
1: हाँ। और मन भूल चला बड़े बड़े नवलोबा। आज आहते मैं यूं याद करूं क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी होया था बेबी बाबू जगजीवन राम जी।
0: हाँ बाबू जगजीवन राम जी
1: बेबी महान स्वतंत्रता सेनानी होया था दलितर मसीहा होया था और कुशल राजनेता और उप प्रधानमंत्री भी होया था।
0: अरे भाई मने था है बाबू जगजीवन राम जी पक्के रंगरा रोडा का
1: हाँ
0: दौड़ा का बा पैरता है
1: थे गया मिलने
0: सासा राम गियो हूँ एक बार उठे का है जो कोई जलसो हो नहीं
1: हाँ
0: जब मानी है तो मिनक ले गया रेलगाड़ी में
1: हाँ
0: फिर मैं तो दिल्ली गया दिल्ली में फिर गाड़ी की पकड़ी फिर मैं सासा राम गया।
1: अरे नवलोबा ए रेल मंत्री और कृषि मंत्री रूप में भी काम करियो।
0: अरे हाँ भाई अपन जोधपुर आयोड़ा है करसा मंडी जो है जो है कह कर गुदगठन करियो।
1: हाँ
0: मंठा है मैं हूं जानू गया मैं हूं मिलियो रो एक बार जग साव मिन का
1: हाँ
0: और पग भी सको।
1: हाँ नहीं बात अच्छी है नवलोबा
0: तो वाह भाई वाह तो परबा ते पर ढोक देवा कोटी कोटी नमन करा
1: मन करा मन डेरा फूल चढ़ावा। बड़े नवलोबा आज जन्मदिन दलाई लामा जी रो और ए 14वां दलाई लामा है अबार तेनजिन ग्यात्सो आनो नाम है नवलोबा। ए
0: भाई देखे
1: हाँ
0: के न्यारा न्यारा धर्म में न्यारी न्यारी उपाधि
1: हाँ
0: ठीक है नी
1: बात अच्छी है
0: जो देखो कोई संत मेहंत है
1: मेहंत हाँ
0: कोई कह नहीं के भाई माँ मंडलेश्वर है
1: हाँ
0: कोई है जो कह नहीं के महाराज सा है
1: सिद्ध है
0: कोई हाँ। सिद्ध है
1: हाँ।
0: तो दलाई लामा को है बौद्ध धर्म में जिको हैंग ऊंचे ओदे माते वह नी
1: हाँ
0: जगो भगवान बुद्ध रे बतेड़े मार्ग माते हले
1: शांति और करुणा रो प्रतीक मानी जावे
0: हाँ ठीक है नी
1: हाँ।
0: तो दलाई लामा है जो कह नी भाई अपारे भारत देश में ही हमार रवे है
1: हाँ अबार भारत में ही जन्म
0: तिब्बत में है
1: बिल्कुल
0: और है जो मारी मन में है हूँ यार एक मिल जाऊँ तो
1: हाथ नवलोबा मने मने ले लाला नवलोबा।

0: वाह भाई ये बात निहाल कर
1: बड़ा
0: दिया।
1: नवलोबा। एक और आपने भारतीय सिनेमा रे इतिहास में क्रांतिकारी फिल्म निर्देशक होता मणिकौल
0: हाँ
1: बाने भी आज याद करा, बाणी भी आज पुण्य तिथि है।
0: हाँ भाई
1: और मैं न्यू वेव सिनेमा लेन आया था नवलोबा भारत सिनेमा में।
0: हाँ भाई देखे हैं आप रखे नहीं क्या कल होशियारी लगा इनकी इनकी इच्छो का काम करे
1: हाँ
0: तो मणि तो बेकह नहीं कि चमक नाली वह
1: हाँ
0: और कॉल करन आया है तो
1: हाँ
0: आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मन
1: मन
0: में
1: ले
0: ना
1: रहा
0: भूल
1: फूल
0: सका
1: चढ़ावा।
0: बड़े
1: बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है अपने भारत रा दूरदर्शी बिजनेसमैन महान बिजनेसमैन जिका रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट घराने ने शुरू करियो थो।
0: ए धीरू भाई
1: हाँ धीरू भाई अंबानी।
0: कहता कि कर लो दुनिया मुट्ठी में
1: हाँ वही
0: मुट्ठी
1: वही
0: में कर
1: वही
0: देगा उन टाइम कहीं है कि देश आजाद हुए अपर अटैक कल कारखाना कैद उद्योग धंधा थरपीजन ढुका
1: हाँ
0: तो धीरू भाई तो अहमदाबाद में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता
1: हाँ
0: गाड़ियों में
1: हाँ
0: और रात रा होता रेलवे स्टेशन माते
1: है नी
0: हैंग
1: है नी
0: मैं एक दो बार गियो अहमदाबाद हूँ हैंग थोड़ हूँ तो
1: हाँ
0: मैं कहा भाई
1: धीरू भाई
0: धीरू
1: उमिलू।
0: भाई अंबानी कट होता तो ऐड़ा कह नहीं बिरला मिन्ने कह जी देश रे कह
1: और पचे
0: बिरला
1: खुदरी मियारी सब वो मोटी रिफाइनरी
0: अरे
1: खोल ली।
0: हाँ भाई यार बेटा है जिका कह देखो सबको काम करे देश वास्ते
1: हाँ मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी
0: तो
1: जी।
0: भाई यूं
1: हाँ
0: है तो आनी
1: हाँ
0: है जो कोई नहीं भूल सके पर बाते पर धोखदा कोटि कोटि नमन
1: नमन
0: करा मन
1: करा
0: मेला
1: मन
0: फूल
1: लेरा
0: चढ़ाओ
1: फूल
0: बड़े
1: चढ़ावा। बड़े नवलोबा आज पुण्यतिथि है नर्मदा पुरुष कैलावन वाला अमृत लाल बेगड़ जी री, क्योंकि है
0: नदी
1: आपरी जिंदगी हाँ पूरी समर्पित कर दी नवलोबा नर्मदा में सवारण वास्ते वीरे वाते आर्टिकल और कविता लिखी और भी नवलोबा कई चीजा में नर्मदा वास्ते
0: भाई
1: पुरुष कहवे।
0: नर्मदा नदी है
1: हाँ
0: और बा है जो कह नदी तो हैंगरी माँ वे
1: हाँ
0: तो मैं है जो माँ बाबत की जिक तो काम करियो तो
1: हाँ
0: वो काम तो बिरला मिन्ने की कर सके तो
1: हाँ
0: अमृत लाल जी अमृत जेड़ो काम करियो तो
1: हाँ
0: आनी है जो को कोटि कोटि नमन करा पर बाते पर ढोक
1: और
0: देवा
1: मन रहा
0: मन
1: फूल
0: रहना फूल
1: चढ़ावा।
0: चढ़ावा और हमें मारो मन शांत करने वाते एक
1: हरजस
0: न नौ मीठो हरजिशी होना दे।
1: वाह।

0: वाह भाई ये निहाल कर दिया
1: निहाल होइया
0: अब रसोड़े में देखा थोड़ा तपतरा दी मैं फटोफट ऐसी को कह रसोड़ो तैयार कर लो
1: हाँ।
0: भाई देखा मैं आंधी रात दिन है
1: हाँ।
0: पर काले देखे का आज रात रो में होगो तो काले रोटी करो ने खेत में आला
1: हाँ।
0: मैं कह दू तो हूँ फेर दू माड़ा फिर रसोड़ो कर लो बेलू तैयार और मैं तारा ही खासा ऊंचा आई जा है और अंदाजियो हुंडू को है प्रोग्राम रो टाइम ही पूरा होगो है तो भाई जनाओं ले वहीं
1: राम राम, राम।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। इस समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं रावण फिल्म से। गीतकार है कुमार, संगीतकार विशाल शेखर और इस गीत को गाया है शफाकत अमानत अली और साथियों ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे पटियाला हाउस फिल्म से। गीतकार अनविता दत्तगुप्तन और संगीतकार शंकर एहसान लॉय। इस गीत को गाया हार्डकोर महालक्ष्मी अय्यर, जसबीर जसी और साथियों ने। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। संगीत है शंकर एहसान लॉय का, इस गीत को गाया है विशाल ददलानी और साथियों ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको द डर्टी पिक्चर से। गीतकार है रजत अरोड़ा, संगीतकार विशाल शेखर और इस गीत को गाया है कमाल खान ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं सिंगम फिल्म का ये गीत। गीतकार है स्वानंद किरकिरे, संगीत है अजय अतुल का और इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल और अजय ने।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं अग्निपथ फिल्म का ये गीत। गीतकार है अमित भट्टाचार्य, संगीत अजय अतुल का है और इस गीत को गाया है रूप कुमार राठौड़ ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म रॉकस्टार का ये गीत। गीतकार है इरशाद कामिल, संगीतकार AR रहमान, और इस गीत को गाया है मोहित चौहान ने।

लव यू मिस्टर कलाकार फिल्म से ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। गीतकार है मनोज मुंतशिर, संगीतकार संदेश शांडिली और इस गीत को गाया है नीरज श्रीधर और श्रेया घोषाल ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश आपको सुनवाने जा रहे हैं दम मारो दम फिल्म से। गीतकार जयदीप साहनी है, संगीतकार प्रीतम, और इस गीत को गाया है किरण कामत ने।

0: श्रोताओं, एस किंग और सुनिधि चौहान को आप सुन रहे थे फिल्म दम मारो दम के इस गीत में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। श्रोताओं, रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री

0: मंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में दो वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की

0: लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामान

0: सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ. गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
2: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। सुनवाते हैं पहला गीत रिफ्यूजी फिल्म से। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार अनु मलिक, और इस गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं जख्म फिल्म से गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार MM करीम, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने।

ये तेरा घर ये मेरा घर, इस फिल्म से आपको अगला गीत सुनवा रहे हैं जिसके बोल लिखे हैं इब्राहिम अश्क ने, संगीत है आनंद मिलिंद का और इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने।

ये है जलवा। अगला गीत इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, गीतकार है सुधाकर शर्मा, संगीत हिमेश रेशमिया का है और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। यह है कार्यक्रम फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम खेल जगत आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: भारत के खेलों के क्षेत्र में बढ़ते कदम विषय पर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया से अमित कुमार की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र चूरू का अंशदान है।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। साथियों, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विगत 12 वर्षों में खेलों की अवसंरचना में लगातार बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज भारत है विश्व महाशक्ति के रूप में उभरा है। 2026 के पैरा ओलंपिक, पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स एवं पैरा एशियन गेम्स में भारत के लिए अवसर बहुत अधिक बढ़ गए हैं। और न केवल पैरा कॉमनवेल्थ एवं पैरा एशियन, हम पैरा ओलंपिक की भी बात करेंगे। तो किस प्रकार से भारत के अवसर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हमारी क्या संभावनाएं रहेगी, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पद्म भूषण श्रीमान देवेंद्र झाझड़िया जी को। आप भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है, तो सबसे पहले सर आपका स्टूडियो में स्वागत है। सर
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर जब हम बात करते हैं खेलों की, तो पिछले 12 वर्षों में खेलों के अवसंरचना में काफी बदलाव आया है और मानसिकता में भी काफी बदलाव आया है, तो किस प्रकार का बदलाव आप देखते हैं?
2: मेरे ख्याल में जो 12 साल में जो बदलाव आया खेलों में, वो एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन है। इतना बड़ा परिवर्तन मेरे ख्याल से 12 साल में कभी भी नहीं हुआ। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों और खेल दोनों को बहुत पसंद करते हैं। एक समय होता था जब हिंदुस्तान खेलों में कोई ज्यादा नहीं करता था, लेकिन आज आप देखते हैं, मैं आपको आंकड़ों के साथ कह सकता हूँ, पेरिस पैरा ओलंपिक और ओलंपिक,
1: जी जी,
2: ओलंपिक में भले ही हम उम्मीद के मुताबिक हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ओलंपिक में फोर्थ, फिफ्थ और

0: 2006 में हमारे 17 खिलाड़ी रहे थे
1: जी जी,
0: लेकिन जैसे ही पैरालंपिक स्टार्ट हुआ, और मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें मैंने बोला था अब की बार 25 पार
1: जी जी,
0: और हमने 29 मेडल जीत करके मेडल टैली में 18वें नंबर पे रहे। और इसका आंकड़ा मैं आपको बताता हूँ, एक जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने एक जारी किया था कि सबसे ज्यादा मेडल में किसी ने ग्रोथ की है तो वो इंडिया ने की
1: जी जी।
0: तो ग्रोथ के मामले में इंडिया नंबर वन रहा पेरिस पैरालंपिक। आपने बात की आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और एशियन और पैरा एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ तो साथ में होते हैं, एक ही होता है कॉमनवेल्थ, मेडल टैली में सेम ही काउंट होते हैं पैरा का और एबल का, लेकिन पैरा एशियन अलग होते हैं, एशियन अलग है। कॉमनवेल्थ की बात करूं, बहुत ही शानदार हमारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग हुई है, और पहली बार मैंने खुद ने एक मीटिंग ली थी, खेल को स्वच्छ बनाए, ये भारत सरकार का था। उसका मतलब ये होता है कि जब हमारे खिलाड़ी जाएंगे तो जैसे कहीं डस्टबिन है वहां पे हमें कूड़ादान में डालना है, कोई भी हमें अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना है, किसी को घूरना नहीं, हमें बुरी नजर से नहीं देखना है, किसी की तरफ एग्रेसिव नहीं होना है, ये हमारे संस्कार है
1: जी जी।
0: ये जो पुराने संस्कार थे हमारे, वो संस्कार भी है। और कॉमनवेल्थ के बारे में कहूं आपको, विशेष तौर पे पैरा कॉमनवेल्थ के, मुझे क्योंकि यहाँ पैरा कॉमनवेल्थ में हमारे बहुत कम इवेंट होते हैं, लेकिन अब की बार हम पैरा कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी हैं वो ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे, वो हाईएस्ट मेडल जीतेंगे, आज तक के इतिहास का सबसे ज्यादा मेडल जीतेंगे, ये मैं आकाशवाणी में घोषणा करके जा रहा हूँ
1: जी। बहुत ही सुखद बात है, और हमें उम्मीद भी है कि जो आप घोषणा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कार्यान्वित भी होगी, और देश का मस्तक है वो, तिरंगे की शान है वो लहला उठेगी। जब हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स की, तो जो खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो बहुत अधिक विशेष होती है, ताकि वो मेडल जीत सके, तो कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो दी जाती है?
0: देखिए 12 साल में जो बदलाव आया सुविधाओं का, ये इतना बड़ा बदलाव है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जो वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेकर के आए। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में जो खिलाड़ी आता है उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। दो चीजें होती हैं इसमें, एक तो होती है पॉलिसी और एक होती है पॉलिसी इंप्लीमेंट। तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट बहुत जबरदस्त हुआ है। खिलाड़ी एक मेल डालता है मिनिस्ट्री के पास कि मुझे यूरोप ट्रेनिंग पे जाना है, सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के भी अधिकारी हैं और एक पीएमओ का अधिकारी रहता है
1: जी।
0: तो उसमें क्या होता है, जैसे ही खिलाड़ी कुछ सुविधाएं मांगेगा, वो इंडिया में ट्रेनिंग करना चाहता है, बाहर ट्रेनिंग करना चाहता है, उसको पूरा संपूर्ण खर्चा भारत सरकार उठाती है। फिर मोदी जी ने कहा कि खिलाड़ियों का तो हम खर्चा उठा ही रहे हैं, उन्होंने देखा कि कई ऐसे किसान फैमिली से बच्चे आए, ऐसे मजदूरों के बच्चों ने मेडल जीता, तो उन्होंने कहा इस फैमिली का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 50,000 रूपए पर मंथली पॉकेट मनी दी जाती है खिलाड़ी को कि तेरे परिवार को भी ध्यान रख पाई
1: जी जी।
0: ये दर्शाता है। और जो आधुनिक सुविधाएं दी हैं भारत में, आप देख रहे हो जूनियर लेवल पे हमने जो परफॉर्मेंस दी है, यही नतीजा है कि आने वाले समय में भारत एक अग्रणी देश होगा स्पोर्ट्स में
1: जी। हम बात कर रहे थे पैरा कॉमनवेल्थ एवं पैरा एशियन गेम्स में, और आपने जिस प्रकार से हमें आशान्वित किया है कि भारत है वो बहुत ही अधिक अच्छा प्रदर्शन करेगा, खेल के प्रति ऐसा लगाव भी ऐसा है कि हम हमारे खिलाड़ियों से बहुत अधिक उम्मीदें करते हैं और अधिकतर हमारी उम्मीदें पूरी भी करते हैं, लेकिन क्या वजह रहती है कि जो ओलंपिक में हम जाते हैं तब हमारा प्रदर्शन इतना मानक के अनुरूप नहीं रह पाता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार भी हम जब ओलंपिक लॉस एंजेलिस में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम प्रदर्शन करेंगे
0: 100%। एलए में जो ओलंपिक पैरालंपिक होने जा रहा है, मैं आपको बताऊं पैरालंपिक में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जैसे नियर टॉप 10 पहुंचे
1: जी,
0: और जब टॉप 10 में आप आते हो तो हमारा जो संकल्प है
1: जी
0: 2047 विकसित
1: भारत,
0: तो उसमें पहला टारगेट यही है कि टॉप 10 में आना। तो सबसे पहले विकसित भारत की कोई सीढ़ी चढ़ेगा वो दिव्यांग खिलाड़ी चढ़ेगा
1: जी जी जी।
0: ये अपने आप में बड़ी बात है। खेलों में जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो ट्रेनिंग प्लान है भारत सरकार का, स्पोर्ट्स साइंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जूनियर खिलाड़ियों को प्रमोट किया जा रहा है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ एलए में हमारी पूरी टीम बहुत शानदार परफॉर्मेंस
1: जी। आप स्वयं बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आपने देश का नाम भी है बहुत बार गौरवान्वित किया है, वर्तमान में आप भारतीय पैरा ओलंपिक समिति

0: अध्यक्ष भी है, तो जब आने वाले समय में अहमदाबाद में भी कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होंगे और साथ साथ भारत सरकार है 2034 में ओलंपिक को भी होस्ट करने के लिए प्लानिंग चल रही है, तो उस परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की तैयारियों की जरूरत है?
1: देखिए, भारत की लीडरशिप, नरेंद्र मोदी जी की जो लीडरशिप है, दुनिया ने उसको माना कि भारत कुछ भी कर सकता है। उसी श्रेणी में हमें कॉमनवेल्थ की मेजबानी मिली, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सेकेंड टाइम भारत कॉमनवेल्थ गेम्स कर रहा है, कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मैं बताना चाहता हूँ, यदि हमारे 2036 की जो ओलंपिक पैरालंपिक है, हमने दावा किया मेजबानी का, उसमें सबसे बड़ी हमारी कोई ताकत होगी तो ये कॉमनवेल्थ गेम होगा। हम अच्छा कॉमनवेल्थ गेम करवाएंगे। इससे आगे कुछ परफॉर्मेंस देखी जाती है कि प्लेयर वहां के कैसे हैं, तो उसमें जैसे हम मेडल टैली में पैरालंपिक में हम 18वें नंबर पे रहे, इसका मतलब ये है कि गेम में भी भारत स्ट्रांग है।
0: जी जी,
1: भले ही हम ओलंपिक में थोड़े से पिछड़े हैं, लेकिन पैरालंपिक हमारा बहुत शानदार परफॉर्मेंस देता है। और जो आईपीसी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि ओलंपिक हमें कहां देना चाहिए, तो उस श्रेणी में हम आगे हैं। तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि हमारी 36 की जो ओलंपिक हमारे मेजबानी मिलेगी, वो एक ऐतिहासिक ओलंपिक होगा हमारा।
0: पहले एक नारा चलता था कि अगर खेलोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और वर्तमान में सरकार ने इस नारे को पूरी तरीके से चरितार्थ है वो चेंज कर दिया है। आज अगर जो खिलाड़ी जो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे शहरी क्षेत्र से हो, अगर वो अच्छे तरीके से खेल रहा है और बहुत अधिक मेहनत करके अगर करना चाहता है, तो इस क्षेत्र में काफी कुछ कर सकता है। तो खेलों में किस प्रकार से युवा है वो अपने करियर बना सकता है?
1: देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया स्कीम लॉन्च की थी, उसका टारगेट क्या था? जूनियर लेवल के वो बच्चे जिनको प्रतिभा तो है पर सुविधाएं नहीं उनके पास, वो किसान फैमिली से हैं, कई ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके लिए ये स्कीम आई खेलो इंडिया। ये जूनियर बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में जब बच्चा जाता है खेलो इंडिया खेलने के बाद में, जब सिलेक्शन होता है, उसको सालाना उसको 8 लाख रुपए की फैसिलिटी मिलती है। और आप यकीन नहीं करोगे, दुनिया के जो बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर हैं, वैसी फैसिलिटी उनको यहाँ मिलती है। मुझे आज भी याद है जब हम पुराने टाइम में ट्रेन के लोकल केबिन में बैठ के जाते थे, आज 16 साल का बच्चा जब नेशनल खेलने जाता है तो भारत सरकार उनको फ्लाइट की टिकट देता है, और वो ये कहता है ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। उसमें भी सालाना 8 लाख रुपए में आपको पर डे 500 रुपए की डाइट मिलती है, आपको एसी रूम मिलता है, आपको कोच मिलता है, आपको न्यूट्रिशन मिलता है, आपको फिटनेस ट्रेनर मिलता है, और इवन आपको साइकोलॉजिस्ट भी मिलता है। एक बच्चे को इतनी फैसिलिटी मिलती है तो खिलाड़ी क्यों नहीं बनेगा? और उसको 10,000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, सालाना 25,000 रुपए की उसको किट मिलती है। यानी जब बच्चा बैग उठा के घर से जाता है तो वो सरकार के गोद चला जाता है। ये स्कीम है खेलो इंडिया, उसको 10,000 रुपए पॉकेट मनी बहुत बड़ी बात है 16-17 साल के बच्चे को मिलती है। यानी माँ बाप ये सोचते हैं कि अब हमें देने की जरूरत नहीं है, बच्चे को सब फैसिलिटी भारत सरकार देती है, और वो पूरी इम्प्लीमेंट है। जब इम्प्लीमेंट होती है कोई पॉलिसी तो उसका रिजल्ट आता है।
0: जी जी, जब हम बात करते हैं खेलों की, तो खेलों में शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता का विकास भी बहुत जरूरी है, खासकर जब हम बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करने का। तो किस प्रकार से खिलाड़ी अपनी मानसिक क्षमता का विकास करता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है?
1: देखिए, मैं कह सकता हूँ खिलाड़ी से ज्यादा मानसिक तौर पर फिट कोई नहीं हो सकता। खिलाड़ी एक ऐसा होता है, जब वो कंपटीशन में खेलने जाता है और जब वो कंपटीशन हार जाता है, अगले दिन फिर वो ग्राउंड में जाता है
0: जी।
1: कि मैं अगले टूर्नामेंट में जीतूंगा। यदि कोई बिजनेसमैन फेल हो जाता है बिजनेस में, तो अगले दिन अपने बिजनेस पे नहीं जा पाता। इसलिए मैं कह सकता हूँ खिलाड़ी सबसे ज्यादा मानसिक तौर पर फिट होता है। लेकिन हमारी भारत सरकार ने मानसिक तौर पर फिट करने के लिए कई ऐसे साइकोलॉजिस्ट अपॉइंटमेंट किए हैं कि कोई फिर भी प्रेशर में आए। कई बार क्या होता है, बाई कंट्री बहुत हमारे पे प्रेशर होता है, बाई फैमिली बहुत प्रेशर होता है, दर्शकों का बहुत प्रेशर रहता है, तो उन सबको कम करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि सबसे बड़े इवेंट ओलंपिक जैसे खेलों में मैंने 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, वो अलग बात है, मैं प्रेशर नहीं मानता। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी प्रेशर नहीं मानता, हर कई खिलाड़ी प्रेशर मानते हैं। तो मानसिक तौर पर सबसे ज्यादा खिलाड़ी फिट होता है।
0: जी, जब हम बात करते हैं 12 साल समृद्धि के, 12 साल विश्वास के और 12 साल सुरक्षा के, तो इन 12 सालों में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किया है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में किस प्रकार की उम्मीदें और बढ़ जाती है?
1: पिछली 12 साल को छोड़ दें तो भारत

0: 60 सालों में 8 ही पैरालंपिक मेडल जीते और इन 12 सालों में कितने जीते, 52 मेडल जीते। तो ये दर्शाता है ये दिव्यांगों के प्रति जो सोच है भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की, जब वो सपना देख रहे हैं 2047 विकसित भारत का, तो ऐसे ही सपना पूरे होंगे। इसलिए काम बोलता है, उन्होंने काम किया है, हर वर्ग को उन्होंने टच किया है, इसलिए कहते हैं सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास।
1: जी सबका साथ सबका विकास, और इसी ध्येय पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य भी कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: बस मैं युवाओं को इतना संदेश देना चाहता हूँ आपके रेडियो के माध्यम से कि जिंदगी में आप निराश ना हो, और सबसे बड़ी आपकी कोई ताकत है तो वो ये कि आप अपने आप पे विश्वास करें कि मैं कर सकता हूँ। आइए हम सब मिल करके इस

0: विश्वास करें कि मैं कर सकता हूं। आइए हम सब मिलकर के इस देश को दुनिया की ऊंचाई पे लेकर के जाएं।
1: जी, आप स्टूडियो में आए और बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे श्रोता साथियों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के खेलों के क्षेत्र में बढ़ते कदम विषय पर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया से अमित कुमार की बातचीत। यह आकाशवाणी चूरू का अंशदान था। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं खिलाड़ी अंजू मेहरिया से गोपाल लखन की बातचीत।
3: श्रोताओं, यदि मन में हौसला बुलंद हो तो हम आसमान को भी छू सकते हैं अपनी मेहनत के दम पर। एक छोटे से ग्रामीण परिवेश से निकलकर जब हम बड़े शहरों की नेशनल स्तर पर अपना नाम रोशन करते हैं अपने खेल के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर, तो दुनिया हमें जानने लगती है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अंजू मेहरिया। अंजू मेहरिया एक सफल खिलाड़ी हैं और इनका कोई एक खेल नहीं है, कई खेल हैं। जैसे आप कबड्डी की नेशनल प्लेयर हैं, एथलेटिक्स में 1500 मीटर की दौड़ आप करती हैं और अमेरिकन फुटबॉल स्टाइल का एक गेम है रग्बी, उसमें भी आप महारत हासिल करती हैं। आज जानते हैं अंजू मेहरिया के खेल जीवन के बारे में। अंजू नमस्कार, स्वागत है आपका।
4: नमस्कार सर।
3: अंजू मेहरिया, सबसे पहले अपने कहां से आपने शुरुआत की, कैसे आपका खेलों की दुनिया में आना हुआ?
4: सर, मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़कियों का बाहर आना बड़ी मुश्किल होता है। घर गृहस्थी को संभालना, फैमिली को संभालना, ये सब कुछ पहले ही लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को जल्दी ये जो सामान्य बातें हैं वो जल्दी ही संभाल ली जाती है।
3: जी।
4: मैं एक सामान्य परिवार से हूँ इसलिए मेरा भी बहुत मुश्किल था बाहर आना। हम तीन बहनें थी, आसपास का माहौल ऐसे था कि लड़कियों को छोटी मोटी पढ़ाई करके गांव में छोटे मोटे काम धंधों में जोड़ दिया जाता था, जल्दी शादी विवाह कर दिया जाता है सर। लेकिन माता पिता का आशीर्वाद प्लस उनकी एक लड़कों के प्रति जिस सोच को वो आगे बढ़ाते उसी प्रकार हम लड़कियों के प्रति भी वो अच्छा सोचे और हमारे को भी आगे बढ़ने का मौका दिए सर। मैं खेल में इतना नहीं जानती थी, सामान्य परिवार से थी तो बाहर गांव में खेल झूल होता था तो इतना बाहर भी नहीं आते थे। जब स्कूल हुई, कॉलेज हुए, उसके बाद जब मेरा सर मेरे यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज में एडमिशन हो गया था
3: जी।
4: तब मैं बाहर निकलना थोड़ा प्रारंभ की। माता पिता को समझाया कि सर बाहर निकलने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद जब मैंने आर्मी की तैयारी शुरू की तो मुझे एक एकेडमी मिली जहाँ पे मैं सामान्य परिवार से तो थी, मुझे इतना फैमिली से भी इतनी सपोर्ट नहीं था कि पैसे वगैरह मिल सके और मैं एक आर्मी की अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर सकूं। तो फिर एक मुझे फ्री डिफेंस एकेडमी मिली जिसका नाम था राम डिफेंस एकेडमी। वहाँ मुझे पता लगा कि वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग होती है तो सर मैंने वो ज्वाइन की। मेरा BSF ट्रेडमैन में हो गया था बट मैंने ज्वाइन नहीं की ताकि मैं स्पोर्ट्स में आना चाहती थी सर। स्पोर्ट्स में आने के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल में मेरे गोल्ड मेडल लगा सर कबड्डी में। इसके बाद में मैंने BPED में एडमिशन लिया और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी अभी उड़ीसा भुवनेश्वर में मेरा मैच हुआ था लेकिन मेडल नहीं लग पाया सर। उससे पहले मेरे नेशनल में तो मेडल था।
3: अच्छा, जैसे आपने कबड्डी खेल चूज किया सबसे पहले, फिर आप एथलेटिक्स में आ गई, तो कबड्डी खेल से जो चुनने के लिए सजेस्ट किसने किया था, माता पिता ने या आपके जो एकेडमी के सर थे उन्होंने?
4: सर माता पिता ने भी किया कि जो तेरे को पसंद हो वो गेम चूज कर। उसके बाद मैंने जब डिफेंस ज्वाइन की तो मैं आर्मी की तैयारी करती थी तो 1600 मीटर तो मेरी दौड़ थी, उसके साथ साथ मेरी स्टेमिना अच्छी होने के कारण मैंने कबड्डी ज्वाइन की। उसमें मेरे अच्छा प्रोग्रेस दिखा तो जब कोच वगैरह के माध्यम से भी ये पता लगा कि तू बहुत अच्छा कर सकती है तो मैंने ना कबड्डी के अंदर जब मेरा मैच हुआ उसमें नेशनल में मैंने गोल्ड जीता तो मुझे ऐसे लगा कि मैं हर एथलेटिक हर गेम को कवर कर सकती हूँ। इसके बाद मैंने जो फुल अमेरिकन फुटबॉल है रग्बी उसमें भी पार्टिसिपेट किया तो उसमें मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में चयन हुआ। मैंने 7-side प्लेयर में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस दिया सर उसमें।
3: जब आप जिला स्तर पर पहली बार खेली और फिर आप स्टेट में खेली, नेशनल में खेली, तीनों बार खेलने में कुछ फर्क रहा होगा क्योंकि हर बार आप लेवल आपका बढ़ता गया, तो डर लगा आपको कि मैं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी?
4: सर शुरू में तो डर लगता था लेकिन जब कोच वगैरह साथ के साथ ही रहते थे तो बोलते थे कोई बात नहीं इस बार हार जाएंगे अगली बार जीत जाएंगे, लेकिन एक हौसला ही बड़ा होता है सर। कोच वगैरह साथ रहते थे, घर से बात होती थी तो बोलते थे कोई बात नहीं, हारना जीतना वो सब किस्मत की बात है लेकिन अपना पूरा 100% देना सर, तो इस वजह से अच्छा ही होता था।
3: अच्छा, कबड्डी में भी काफी मेहनत करनी पड़ती है और एथलेटिक्स में भी, जब आप गेम खेलने जाती हैं तो किस तरह तैयारी करती हैं?
4: सर एथलेटिक तो मेरा जब आर्मी की तैयारी करती थी तो वो तो

0: कंपलसरी मेरी रनिंग वगैरह सब भी पहले से ही स्टार्ट था। उसके बाद जब कबड्डी में होता है तो उसमें थोड़ा वेट वगैरह बढ़ाना होता है, तो ऐसे होता था जिस प्रकार मैं एथलेटिक करती थी उसकी अपेक्षा थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ता था। कबड्डी में अपनी स्टेमिना थोड़ा बॉडी बनाना पड़ता था इससे, ताकि कबड्डी आसान गेम नहीं है सर, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लगने की होती है, ताकि मैं ये भी सोचती थी अगर इसमें लग गई तो मेरा एथलेटिक गेम छूट जाएगा 1500 मीटर जो है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हालांकि छोटी मोटी इंजरी आती रहती है लेकिन खिलाड़ी को सर इन बातों से फर्क भी नहीं पड़ता।
1: आपने एथलेटिक्स में भी 1500 मीटर चुना, 100 मीटर क्यों नहीं?
0: सर मेरी स्टेमिना अच्छी थी, बट मैं आर्मी की भी तो करती थी ना साथ में, तो मेरा बीएसएम में हो गया तो 1600 मीटर वैसी मेरी थी जो रनिंग होती थी। उसके बाद में मैंने इवेंट को 1500 मीटर ही चुना, यूनिवर्सिटी में मेरे मैच हुए, इंटर कॉलेज में मैंने पार्टिसिपेट किया तो उसमें मैंने 1600 मीटर को छोड़ के मैंने 1500 मीटर किया, क्योंकि उसमें मेरा टाइम कवर अच्छा आ रहा था। सर
1: 1500 मीटर की जब दौड़ होती है तो स्टार्ट किस तरह से लेते हैं? कुछ खिलाड़ी बहुत तेज भागते हैं शुरू में, बाद में वो धीमे पड़ जाते हैं, तो जब स्टार्ट लेता है खिलाड़ी किस तरह से लेता है, और अगर जीतने की ख्वाहिश हो तो क्या उसमें स्ट्रेटेजी रहती है हमारी?
0: जब सर 1500 मीटर की रनिंग स्टार्ट करते हैं उसके अंदर सबसे पहला राउंड होता है उसको अपन नॉर्मल तरीके से लेते हैं, लेकिन सर जब दूसरा और तीसरा राउंड होता है उसमें अपनी स्टेमिना खोल दी जाती है, और जब लास्ट का 500 मीटर का राउंड होता है सर उसमें सब कुछ भूल के वो जीत की आस की उम्मीद पे
1: सर सारा दम आखिरी 500 मीटर में लगाना पड़ता है।
0: बिल्कुल सर।
1: रग्बी की तरफ फिर कैसे आना हो गया? वो भी एक डिफरेंट गेम है, जबकि आप पहले से ही रनिंग कर रही थी।
0: रनिंग उसमें एथलेटिक का ही एक माध्यम है वो भी सर।
1: अच्छा।
0: उसमें ऐसे होता है कि जब गोल करना होता है तो वो बॉल जैसे फुटबॉल होती है उसको लेके अगली टीम के पास से गोल करना होता है, लेकिन सर वो भी एक मतलब 1600 मीटर जिस तरीके की रनिंग है ना उसमें भी दौड़ करके बाकी सामने वाले विपक्ष वाले खिलाड़ियों को छोड़ के अगली टीम के पास में गोल करना होता है, तो सर वो एथलेटिक का ही था, इसलिए मेरा 1500 मीटर अच्छा था इसलिए मैंने सर वो एथलेटिक वाला गेम यूज किया, क्योंकि उसके अंदर भी अमेरिकन जो फुटबॉल है उसमें थोड़ी रेस ज्यादा होती है।
1: आपकी खेल जीवन भी आपका लगातार चलता रहा और आपकी पढ़ाई भी, आपने ग्रेजुएशन किया है और अभी आप फिजिकल एजुकेशन कर रही हैं डिग्री के लिए बीपीएड, तो दोनों में तालमेल कैसे बिठाती है खेल और पढ़ाई एक साथ?
0: सर मेरा ग्रेजुएशन हुआ वो यूनिवर्सिटी महारानी से हुआ, उसमें मैंने एनसीसी भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे डर इस बात का था कि अगर अपन एनसीसी कैंप ज्वाइन कर लिया तो अपनी पढ़ाई कैसे होगी, क्योंकि सर गांव में पढ़ाई का पहले वैल्यू रखा था घर वालों ने, उसके बाद रखा था कि गेम एनसीसी वगैरह जो भी है तो बाद में ज्वाइन करना, तो मैंने सर एनसीसी को छोड़ दी। उस टाइम पे मुझे डर था और बाकी किसी का मोटिवेशन मिला नहीं था।
1: चूंकि आप एक महिला खिलाड़ी हैं और ऐसे में जैसा आप बता रही थी कि ग्रामीण जीवन में तो काफी जल्दी शादियां कर दी जाती है बच्चों की, तो घर में जो सपोर्ट मिला मम्मी का ज्यादा मिला या पापा का, या दोनों ने कहा कि नहीं जाओ खेलो?
0: सर दोनों का बराबर मिला।
1: तो अभी जब आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगी नेशनल के बाद इंटरनेशनल, और एक समय ऐसा आएगा जब तीनों खेलों में से आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा, कबड्डी एथलेटिक्स या फिर रग्बी, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगी?
0: सर वो तो वैसे मेरा माध्यम तो पहला 1600 मीटर ही था। हाँ। जो मैंने लास्ट में इवेंट को चेंज करके अपना 1500 मीटर कर लिया था। सर मैं पहले एथलेटिक को ही दूंगी।
1: यानी आपकी प्रायोरिटी एथलेटिक्स से 1500 मीटर में आप लगातार रन करना चाहेंगी। कई खिलाड़ी जो शुरू शुरू में किसी एक खेल में आते हैं फिर उसको छोड़ के दूसरे खेल में आते हैं और फिर ऐसे लगता है कि शायद उनमें परफेक्शन आ ही नहीं पा रहा क्योंकि वो बार बार खेल बदलते रहते हैं, ऐसे तमाम खिलाड़ियों के लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे आप?
0: सर वो उनकी स्टेमिना पर डेवलप होता है, जैसे उनकी स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ रही है तो उनका प्रोग्रेस भी बढ़ता रहेगा। इसके बाद जैसे खिलाड़ी को लगे कि अपना माध्यम ये गेम है उसको ना अगर अच्छी मोटिवेशनल के साथ अच्छा प्रोग्रेस करे, अगर उसकी स्टेमिना बढ़ती हुई दिखे तो उसको वही गेम चूज कर लेना चाहिए। सर
1: अंजुम एरिया अभी आपका खेल जीवन काफी बाकी है और आप नित नई ऊंचाइयां छुएंगी ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि जो सफलता आपको अभी मिल रही है या आगे भी बरकरार रहेगी। एक मैसेज और चाहेंगे उन लड़कियों के लिए जो खेल जीवन में आना चाहती हैं और अपनी चमक खेल के माध्यम से पूरी दुनिया में बिखेरना चाहती हैं?
0: जी सर मेरा कहना है कि मेरी छोटी बहनों को बड़ी बहनों को कि वो अपना थोड़ा बॉयज की तरह खुल के जीवन जिए, अपने माता पिता को समझाए और अपना हुनर दिखाए बाहर, ताकि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ सके। सर
1: आपका कोई रोल मॉडल है खेलों की दुनिया में जिसको देखकर आप प्रेरित होती हो कि मुझे उस जैसा बनना है?
0: सर गेम में तो सबका रोल मॉडल होता है, लेकिन मेरा पर्सनल ख्वाहिश था कि मैं आर्मी में जाऊं, क्योंकि मेरे को एक बॉयज की जिंदगी जीना बहुत अच्छा लगता है। सर
1: तो चलिए आपके जो ये विश है पूरी हो जाए और आप नित नई ऊंचाइयां खेलों की दुनिया में बिखेरती रहें और प्राप्त करती रहें सफलताएं। अंजुम एरिया आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में

0: आए और अपने खेल जीवन के बारे में हमें बताया। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, आपको भी बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ के बोलने का मौका मिला।
2: अभी आप सुन रहे थे खिलाड़ी अंजू मेहरिया से गोपाल लखन की बातचीत। अब कार्यक्रम का समय हो चला है, हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूरी नगरी चैनल है। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं चितचोर फिल्म से। गीतकार और संगीतकार है रविंद्र जैन और इस गीत को गाया है यशुदास और हेमलता ने।

फरमा मलिक का लिखा ये गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वारिस से। संगीत उत्तम जगदीश का है और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

श्रोताओं कार्यक्रम फिल्म संगीत में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं राम बलराम फिल्म से गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों ने।

एन इवनिंग इन पेरिस, अगला गीत आपको इस फिल्म से सुनवा रहे हैं। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं नूरी फिल्म का ये गीत, गीतकार जानिसार अख्तर, संगीतकार खयाम। इस गीत को गाया है नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे नूरी फिल्म से। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री

0: पाउना मेन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Syama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्ट मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said, "The possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out." 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee of the cabinet cleared these appointments today. The Nation today paid homage to veteran freedom fighter and former union minister Babu Jagjivan Ram on his